一，阿萨姆邦察赫阿萨姆邦西文明，夜上动物旅游助力阿萨姆邦的经济。听众朋友们，继续收听阿萨姆邦的民间歌曲。

印度的里广播电台，听众朋友们，今天你们收听印度民间歌曲，印度民间歌曲音乐有。

होंठ ये नाजुक जैसे कंवारी कलियां, होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके भीगी बाकी सारी।

आँख शराबी तेरी हर उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आँख शराबी।

काल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म के मारे बैठे गाल ये गोरे गोरे।

0: बदले का क्या होगा हाय हाय।
1: 这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत वन गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता, वैसे ही सुशोभित।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 42। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के ठीक 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 crore rupees विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्र बलानां युद्धाभियान क्षमतां वर्धयितुं रक्षा अधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन 10,000 crore rupees प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः गैस टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडार निरोधक यंत्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिक गमनागमनं यातायात सम्मर्द समस्यामपाकर्तुं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मन्त्रिणः नन्द गोपाल गुप्ता इत्यस्य सान्निध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्री वाहन वाहनानि यात्रीवाहनानि च पृथक् पृथक् मार्गैः यास्यन्ति। 75,100 meter विस्तृत मार्गेण गंगा एक्सप्रेस वे सम्पर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तरप्रदेशे नद्यः उत्तुङ्गस्तरे प्रवहन्ति। अनेन 25 mandalesu जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन

कड़ी बाग मनी सोई सदंगा नामित का सरकार दं इरं तथड़प कपड़ कपड़ पड़ा ही तो पकान रह यू यंग मंडे दं हर गमिन्यक मंद का ते जबे तत्तिंगी दजम नाम मिंगु तथाई तो पड़ा हरी नी अंचमन तजबरु इनी मंगा दिस्वाई दिसी को एक्स का जैसे जबी जंजु ससुरा कदुआ नगद कंबाई साइंग सदंग पड़ा आहिद पकन तंपा अरण्य तंजा तंजा कमजुन मनुजु तद अवसन डिप्लोमेटिक यंग दपद मंगाई दिकन फिर क्यंग सुला बजंग सुन यभी तदिन नाम बजन सत्ता ममुलिकन अदुस एनर्गी नदमय मजा जुई तयुक सबन्यंग न द्वाबजस अदंग तवा सकिबा सदंगन उड़ा रहीजदर जी सब अदेश दिजबनन सजतन सबज सदंग तन्मसुक द्वा अनकनक जन एम्पात पदंपन तेवस्तयम सदंगन यंग मंगहंचुत कन सबवा बंगुनन तेम्पात तिंगर जी फा रूमाने पड़मयम हरि सदंगन कदुआ यंग मन्यस सबवा कंजरान मनिवस्कन सेवदंग पतुगास मेडिस मिजित इजदाज मन्यतकन पियाकन्या मन्यदंग इन्फास्तुक्तुर मिजिक कजंपक बसन जाता हिजबुजा यंग जिजुकुंग इतन सत्ता सजुमुजा तेरदिस यंग सातनी मोमिंजा कन संजाता सबगे बजासन अता सदंगन पसवत निदवक अतौजोन तदड़ा पसुकन डी कवसन पंडुजुकन नगदेतु कमंतरियन कसतन यबनन मन्यतगन वा सदंगन इजदाय जिसर्जु कवसन यबनन सजतन सुडा मनिवस्कन सरी कितन्या दबज तुजोदं दजम तिगा हरि तदहित प्रसिजन यवनन जसेफ आउन मंगतकन एस्कायसी बदभायनी मंग अंचम कसपकतन गंचन तन संजता भुजन यूनी यंग जीतंगाई अमेरिका सरकत यंग सड़ियान्य बत जन मंगाहिति कन्फ्लिक दियंतर इजदर जन हिजबुजा यमंजसक मस्यादकत इंटरनेशनल जंतु मनकन इजदर अगर मंगहंतिकन सदंगन सदंगन इतु ज्वाद दुनिया बतान सितर देवी सुडा मस्तिकन सतुमड़ाजे बागी इंडिया ससुडा मसुक बाबक फिनार इंडिविडु गबुंगन वनिता पड़ा हरी कतिगा सदी कतिगा वर्ल्ड आचरि परिस्थिति डी अहमदाबाद कमादिन दयम यगा सेमी फिनार ससमा अतय चिंजा पमान तनपा यंगाई यंगन असय जम्मू इतु मंगायगन सदता दिनस्कर सदतु संपत पुजुजिमा सदतु संपत पुजुतिगा उन्तुक मंग अमन कन तंपा दिपाटाई पद पदबुतन मेडाजे मास याकन मंगड़ापी आईजादा सैडान दादी कजाकस्तान डी बाबाग फिनाज इनजा बुदिता उत्तमा मनुजु इंजा डॉक्टर एस जयशंकर मंग अजकान पंबिचरण बिजातदार दिन मित्रन्य दादी युक्सेम्बुर्ग जावेद बेटर दी न्यू दिल्ली या मन्यतगन बा कदुआ नगद आड़ा हुबुंगन यंग डी दसा दी दसा साजिंग पचा डी तंगा कतेड़ा पास्तियन दुनिया युगजम बुद मंडुकुंग उपाय इंडियांतु मंदपतकन कुर्सी तताव डी देवन कमनन पेबेबे इदान मंगानचम उन्तुग मुंबयस सत्याप सदंगन बादु अमेरिका सरकार तधड़प असत असत निया दुआ बजा सदंग तेवास अकेबाद सदंगन इजदार डी जबानन सजातन ढंडे वर्ल्ड अच्छी परिस्थिति शीतल देवी मासुक को फाइनल फिनल इंडिविडो गबुंगन उनिता डी अहमदाबाद ममास्तिकन मडाई उन्तुक इंडिया डोमिकियन तड़ीवर तबदिता बदिकुतना मुसिक इंस्ट्रूमेंटरिया निगमातिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कड़ाणा बांध पर 110 मेगा

0: अवार्ड का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए एआई सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजवेश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
7: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों

को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान

0: निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है,

0: विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा। 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Gujarat, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara. Mr. Modi will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the completion of the project. Talking to media persons at Ahmedabad Airport, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, this mega project has now been fully completed and will be formally dedicated to the nation by the Prime Minister.
3: Dedicated freight corridor.
4: The eastern and western dedicated freight corridors are a major backbone of the country's transformation infrastructure. After several years of work, this landmark project has now been fully completed and now will be dedicated to the nation by Prime Minister tomorrow. In 2014, the Prime Minister took up this project and resolved all the issues and challenges associated with it. Today, the project has finally been completed.
3: Jitni bhi usme problems thi, unko solve kiya aur ab complete hua.
2: Our correspondent has filed this report.
5: A major highlight of PM's visit will be the dedication of 3 key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and 3 national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 110 megawatt floating solar plant at Kadana Dam and inauguration of PMAY housing units. Later, the PM will also visit Navsari to inaugurate

0: from Indian industry. Hindustan Times headline says, from missiles to radars, DAC clears 1.1 lakh crore rupee defense boost with 300 kilometer range Sukhoi missiles on list. The Indian Express quotes ISRO chief's message to his staff, allaying apprehensions of the space agency being privatized. The headline states, no privatization, but space economy has to grow. National Film Awards ceremony to be in Gujarat this year, cites the Times of India. And finally, in a first, alternative fuels overtake petrol car sales is a headline in the Financial Express. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today to also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 110,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UNSC. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests three members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of the national capital. And India set to feature in four gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लग्जमबर्ग ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के सत्यनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। गुजरात में वजीर आजम वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी बारबरदारी के लिए मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 अहम सेक्शन भी मुल्क के नाम मुअन्वन करेंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इधर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और इसे वजीर आजम बाजाब्ता तौर पर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
2: मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: वजीर आजम के दौरे के दौरान 326 किलोमीटर पर मुश्तमिल बारबरदारी के मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ किया जाना बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इसकी तामीर पर 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वजीर आजम न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू JNPT से माल गाड़ियों के साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज के कबाइली इलाकों को रेलवे के कौमी निज़ाम से जोड़ेगी। इसके अलावा जनाब मोदी गुजरात और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की खातिर 9,700 करोड़ रुपए मालियत के 3 रेलवे प्रोजेक्ट और तकरीबन 1,780 करोड़ रुपए मालियत के 3 कौमी शाहरा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। وہ کدانا ڈیم پر 110 میگا واٹ کے شمسی پلانٹ اور پی ایم اے وائی ہاؤسنگ یونٹ سمیت 2600 کروڑ روپے مالیت کے

0: गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। बाद में वजीर आजम बीजेपी के एआई से आरास्ता और हाईटेक दफ्तर के इफ्तिताह के लिए नवसरी भी जाएंगे। अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: महाराष्ट्र में वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे और वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है इम्कानात से असरात तक जामे फाइनेंस के लिए एजेंटिक एआई क्वांटम भरोसेमंद बाहम मुंसलिक आलमी निज़ाम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाले तबादले ख्याल में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि किस तरह एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दीगर अहम नीज उभरती हुई टेक्नोलॉजियां आलमी सतह पर शहरियों, कारोबारी इदारों और मईशतों के लिए भरोसेमंद, जामे और ठोस नतीजे पैदा कर सकती हैं। साल 2020 से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जिसमें पॉलिसी साज, इंजबाती इदारे, मरकजी बैंक, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनियां, सरमायाकार, तालीमी माहिरीन और दीगर आलमी मुतालिका इदारे फाइनेंस के मुस्तकबिल और इसे संवारने के बारे में तबादला ख्याल करते हैं। ये सातवां फिनटेक फेस्ट मुंबई में इस महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कौंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इन तजवीज़ों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टोह लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्स के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक्स और सर्वत्र ब्रिज निज़ाम की सरकारी खरीद की तजवीज़ें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइंस के डिज़ाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो सके। इधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने के खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को भी मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लग्जमबर्ग के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा ज़ेवियर बेटेल ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की, ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इस्लाहात की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निज़ाम के हकाइक की अक्कासी हो सके। एक खबर रसां एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बेटेल ने कहा कि भारत के वसी व अरीज होने और इसके आलमी अहमियत के मद्देनज़र तोसी शुदा सलामती कौंसिल में इसका शामिल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने भारत और ब्राज़ील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती कौंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जा सकती है जिनका सरदस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। जनाब बेटेल ने मौजूदा वीटो निज़ाम पर नुक्ताचीनी भी की और इसे दूसरी आलमी जंग के बाकियात से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क को उन फैसलों को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए जिनकी हिमायत वसीतर बैन अलाक़वामी बरादरी ने की हो। लग्जमबर्ग के नायब वज़ीर आज़म भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अलाक़वामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका के कॉमर्स के महकमे ने कहा है कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात की अक्कासी हो, मुसाबिकत मुस्तहकम हो और इख्तरा को बढ़ावा मिले। अमेरिका के मियामी में G20 के इख्तराई वजीरों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका के कॉमर्स के वजीर हॉवर्ड लुटनिक के साथ कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद की मुलाकात के बाद ये ऐलान सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने 6G तकनीक के मुस्तकबिल और नए सिलसिले का टेलीमवासिलाती नेटवर्क तैयार करने में बैन अलाक़वामी इश्तराक की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। ईरान ने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सदर मसूद पेजिशकियान

0: के नई दिल्ली के दौरे से पहले एक अहम सिफारती मरकज के तौर पर भारत के रोल को उजागर किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि ये ग्रुप दो तरफा तजारती और क्लीदी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस बात को उजागर किया कि ईरान भारत के साथ तवील अरसे से कायम अपने ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देता है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर पेजिशकियान की शिरकत के ताल्लुक से जनाब बकाई ने यह एतमाद जाहिर किया कि कसीर रुखी सिफारतकारी से दो तरफा ताल्लुकात में और तेजी के साथ पेशरफ्त होगी। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढह जाने के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और अपनी तहकीकात तेज कर दी हैं। इस वाकये में 7 अफराद की मौत हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दिल्ली पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में इमारत के मुबैना मालकिन और उसके शौहर और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया इस महीने की 6 तारीख को पेश आया था। मुबैना मालकिन और उसके शौहर को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि बेटे को 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में दिया गया है। इस वाकये में हलाक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। मजमुई तौर पर 12 जख्मियों को दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया था। अस्पताल के मुताबिक जिन 3 अफराद को बचाया गया था उनकी हालत नाजुक है, जबकि 2 की हालत में इस्तेकाम है और इनमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इधर दिल्ली सरकार ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD के 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: बारिश होने और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से उत्तर प्रदेश के 25 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान औसत से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश के लिहाज से मुल्क के 5 सबसे ज्यादा बारिश वाले अजला में शामिल हैं। शदीद बारिश के पेश नज़र बरेली में अगले 2 दिन के लिए तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत के रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी टीमों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए कश्तियों और मोटर बोट्स को लगाया गया है। सैलाब के बाद इन्फेक्शन और पानी से होने वाली बीमारियों के खदशे के पेश नज़र महकमे सेहत से पूरी तरह मुस्तैदी बरतने को कहा गया है। इधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पीलीभीत में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से शारदा और देवहा दरिया तुगयानी पर हैं। सैलाब के इम्कान के पेश नज़र इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। इधर अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खत्ते, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज़ में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा रिकर्व खवातीन के टीम गोल्ड फाइनल में भारत की भावना और पूजा का मुकाबला चीन की खिलाड़ियों से होगा। इधर मर्दों के पैरा रिकर्व टीम गोल्ड फाइनल में भारत के हरविंदर सिंह और विजय सुंडी स्लोवाकिया के खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा भारत मर्दों के पैरा कंपाउंडेड टीम फाइनल में भी सोने का तमगा जीतने की कोशिश करेगा, जहाँ श्याम सुंदर स्वामी और तुमन कुमार का मुकाबला इराक के खिलाड़ियों से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
3: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। गोवा के पनाजी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जेर सदारत मुनक़दा मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अखबारात ने नुमाया किया है कि

0: तमाम जोनल कौंसिलें अब रियासतों के दरमियान तनाज़ा सुलझाने के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अवामी फलाही स्कीमों की निगरानी का मौसर जरिया बन गई हैं। अखबारात ने दिफाई खरीद की कौंसिल की तरफ से 1,10,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दिए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कारोबारी एतमाद के सर्वे से मुतालिक खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मजबूत तलब और माशी आदाद शुमार से कारोबारी एतमाद कई सहमाही की बुलंद तरीन सतह पर।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लग्जमबर्ग ने अक्वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमेरिका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के सत्यनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे अमीन खान द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत अमीन खान द्वारा राग मियां की तोड़ी में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। साथियों, स्कूल के दिनों में हैंडराइटिंग यानी लिखावट पर बड़ा ध्यान दिया जाता था और कई लोगों का यह मानना है कि किसी के हैंडराइटिंग में उसके व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। कुछ लोग इसके विशेषज्ञ भी होते हैं जो आपकी लिखावट को देखकर आपके बारे में सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि आप बिल्कुल ही सरल व्यक्तित्व के हैं या हार्ड व्यक्तित्व हैं, यानी कि आप कठिन व्यक्तित्व वाले हैं। इस प्रकार के अनुमान लगा लेते हैं और कई बार तो लोग आपके भविष्य की कल्पना भी कर लेते हैं कि ये आगे चलकर किस प्रकार का इंसान होगा, यानी कि किस प्रकार के जॉब में जा सकते हैं और इसकी जो क्षमता है किस प्रकार की विकसित होगी। इस प्रकार की कई सारी बातें होती हैं। इन्हीं सब विषयों पर एक अध्ययन किया जाता है जिसे हम ग्राफोलॉजी के नाम से जानते हैं और इन्हीं विशेषताओं को यानी कि इनकी खासियत को अध्ययन करने वाले उन्हें ग्राफोलॉजिस्ट कहा जाता है। और सच में हमारी जो लिखावट है वो केवल शब्दों को कागज पर उतारने का माध्यम नहीं है बल्कि हमारे लिखने के तौर तरीके, अक्षरों के आकार, दबाव, स्पीड, झुकाव, दो शब्दों के बीच में जो दूरियां होती है उनके विषय में बहुत सारी बातें उनको देख करके लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, यानी कि ये विशेषताओं का मिश्रण होता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और लिखावट के आधार पर क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हम अनुमान लगा सकते हैं क्या। चलिए बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रजेश त्रोस्तकी जी, जो कि एक टीचर हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं और आप एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात सबका शुक्रिया, ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम का, गुरु का।
0: तो वास्तव में ये ग्राफोलॉजी है क्या, इसके क्या मायने हैं?
1: सर, ग्राफोलॉजी अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे बीच से तो लॉजी करके एक वर्ड आता है और ग्राफ आता है। जैसे कि हमने बचपन में सुना रहेगा बायोलॉजी, तो लॉजी मतलब स्टडी, बायो बायो का मतलब लाइफ, तो हम लाइफ की जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी होती है, तो लॉजी स्टडी है, साइक का मतलब विचार
0: जी,
1: तो एक साइंस है। तो यहाँ पे भी लॉजी वर्ड है और ग्राफ है, सो लॉजी स्टडी और ग्राफ। तो आपकी हैंडराइटिंग, आपका सिग्नेचर, आपके जिंदगी का ग्राफ। अभी कोई अर्थक्वेक होता है तो वहां पे भी ग्राफ, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ पे सीआरओ में आपका ग्राफ दिखाया जाता है,
0: ईसीजी में ग्राफ,
1: ईसीजी में ग्राफ दिखाते हैं। ये ग्राफ है ना, आपके अंदर का ग्राफ है, बाहर का तो है ही नहीं। तो सेम वे आपकी हैंडराइटिंग अंदर का ग्राफ है,
0: यानी कि आंतरिक स्थिति को दर्शाता है,
1: सबकॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, अंदर का जो मन है, बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। मन में जो खलबली चल रही है वो कागज में उतर जाती है
0: जी।
1: अगर आप बहुत ही उत्तेजित हो तो वो दिखेगा, चेहरे पे नहीं दिखेगा लेकिन आपके हैंडराइटिंग में दिख जाएगा,
0: यानी कि आपका व्यक्तित्व है उसकी झलक मिल जाएगी
1: पूरी तरह से।
0: क्या इससे हम सटीक कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसकी हैंडराइटिंग को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में वो व्यक्ति उसी प्रकार का है?
1: हम इंसान के अंदर ना तीन तरीके का व्यक्तित्व होता है जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। पहला व्यक्तित्व वो होता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं हम ऐसे, दूसरा वो होता है जो हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं,
0: यानी कि कुछ इंट्रो होते हैं,
1: हाँ। तीसरा होता है जो हम एक्चुअली होते हैं,
0: जो अंदर है वो बाहर भी है,
1: हाँ। पूरी उम्र है ना पहली और दूसरी व्यक्तित्व में गुजर जाती है, तीसरी जो अंदर है कोर वो नहीं पता चलता। तो हैंडराइटिंग जो होता है वो आपका तीसरी पर्सनालिटी जो छुपी हुई है, जो अंदर है, जो किसी को भी मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो वो पूरा बता देता है।
0: प्रजेश जी, लिखावट में किस प्रकार की चीजों का अध्ययन किया जाता है?
1: देखो, जैसे कि मैंने ग्राफ की बात, ये ग्राफ है पूरा, टाइपिंग वाली जो चीज है, देखो इसमें सब लेटर्स जो सीधे खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप्ड है,
0: टाइप्ड है,
1: ठीक है। लेकिन जब हम नेचुरली लिखते हैं तो किसी की सीधी खड़ी रहती है, किसी की आगे झुकती है, किसी की लेफ्ट की तरफ झुकती है, ठीक है, इसको हम स्लांट कहते हैं, यानी कौन सी दिशा में तुम्हारी हैंडराइटिंग झुक रही। अगर आप पूरा हैंडराइटिंग जिसका भी चेक कर लो तो सीधे और आगे लिखने वाले ज्यादा है, लेफ्ट की तरफ झुकने वाले कम है। तो ये लेफ्ट में क्यों लिख रहा है? जो लेफ्ट में झुका हुआ है वो अपने इमोशंस को नहीं दर्शाता, अंदर रखता है, किसी को नहीं बताएगा। आप कितना भी पूछ लो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसका हैंडराइटिंग लेफ्ट की तरफ जा रहा है।

0: शरीर भी ऐसा पीछे की तरफ हमेशा रहता है। जो सीधा लिखता है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक होता है, तब बताएगा और उसके सामने बताएगा जहां पर वो कनेक्टेड है, जहां जरूरत है। और जो आगे की तरफ लिखता है, अभी मैं देखो ये आगे की तरफ आया, तो मैं सबसे ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगा, मैं किसी को पहचानता हूं या नहीं पहचानता हूं। आपने कभी रिक्शा ट्रैवल किया रहेंगे, कुछ रिक्शा ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर आपको पहचानते भी नहीं फिर भी चालू कर देते बात करना, उस स्ट्रेंजर से भी बात कर लेते हैं।
1: तो लिखावट में गति का भी मायने रखता है, क्या मायने रखता है?
0: अभी जैसे कि कितना फास्ट आप लिखते हो, डॉक्टर्स हैंड राइटिंग आप चेक कर लेना, तो डॉक्टर्स लोग बहुत फास्ट लिखते हैं। डॉक्टर को फटाफट सब बताना है, तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट और तेज होती है। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो फास्ट थिंकर्स होते हैं ना, वो लोग शब्दों को कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि इधर नहीं रहते, वो आगे की तरफ रहते हैं। अच्छा। तो ये लिखते हुए सोच रहे आगे का,
1: आगे के सोच,
0: तो यहाँ के लेटर्स कंप्लीट नहीं करने की वजह से वो फास्ट हैंडराइटिंग आ जाती है,
1: और जिसकी वजह से हैंडराइटिंग थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत आती है।
0: पढ़ने में दिक्कत आती है।
1: पेन को कागज पर अपनी ताकत से जितना दबाया गया, क्या इसका ग्राफोलॉजी में भी कुछ मायने होते हैं, महत्व होता है?
0: बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछा यहाँ पर। तो हम उसको प्रेशर कहते हैं, जितना दबा के लिखते हैं, तो दबा के लिखने में ताकत लगती है
1: जी,
0: और हल्के से लिखने में ताकत नहीं लगती। तो जो भी बंदा बहुत दबा के लिखता है उसका एनर्जी अच्छी है, उसकी ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, तो जब दबा के लिखता है उसकी ताकत ज्यादा रहती है, एनर्जी भी अच्छी रहती है, विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। और जो हल्के से लिखता है वो वीक विल बोलते हैं, उसकी विल पावर, अंदर की आत्मशक्ति जो भी हम कहेंगे, बहुत कमजोर होता है और उसमें एनर्जी भी कमजोर होती है। लेकिन जब ताकत से लिखते हैं तो उधर एंगर भी आता है, गुस्सा भी आता है, और जो एकदम हल्के से लिखते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, जाने दो, माफ कर दो।
1: तो जब किसी की लिखावट पे हम ध्यान देते हैं तो उसकी एकाग्रता, और दूसरी बात है कि जो एक आत्मविश्वास होता है और नेतृत्व क्षमता, क्या इनका भी आकलन किया जा सकता है क्या?
0: अभी जब हम फोकस की बात करते हैं, इसमें दो लेटर है, स्मॉल लेटर, जिसको आई और जे कहते हैं, तो छोटा आई और जे, आपने देखा रहा इसके ऊपर हम डॉट डाल, तो पहले मैंने समझे आई बनाया, फिर पेन उठा के मैंने डॉट डाल, ये डॉट अगर एग्जैक्टली आई के ऊपर गिरा तो यानी कि आपकी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बहुत जबरदस्त है। अगर ये डॉट पीछे गिरा तो आप लेट वाले लोग, प्रोकास्टिन, यानी कि आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। तो ये जो है एकाग्रता, इससे मालूम पड़ती है। दूसरा आपने कहा लीडरशिप की बात करते हैं, तो भी सिंपल है, जिसकी हैंडराइटिंग साइज बड़ी होती है, तो जो बड़े लिखते हैं लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। और लीडर्स को बड़ा पिक्चर दिखता है, छोटा पिक्चर नहीं दिखता। छोटी हैंडराइटिंग वाले छोटी चीजों पे, माइन्यूट डिटेल वर्क पे ध्यान देते हैं, वो लोग बड़ा पिक्चर नहीं देखते, उनका माइन्यूट, उनका रिसर्च विसर्च वाली बात होती है, और बिग हैंडराइटिंग वाले बड़ा काम करते हैं।
1: आज का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमने देखा कि आज सबके पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से नहीं लिख पाता तो इसका कुछ संकेत है क्या? ये
0: बहुत बड़ा संकेत है, लिखना एक बहुत बड़ा मानव स्किल है। जब भी हम पेन पकड़ के लिखते हैं तो हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब को टच करते हैं, तो इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं,
1: ध्यान मुद्रा।
0: और जब भी हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब को टच करके लिखते हैं तो हमारा ध्यान मुद्रा जागृत होता है, 90% ब्रेन सेल जागृत अवस्था में चला जाता है। स्वीडन करके एक देश है जिसने वापस से हैंडराइटिंग के ऊपर लोग रिटर्न आए, अभी स्कूल्स में बच्चों को डिक्टेट कर रहे, बच्चे अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहे और सीख रहे। स्वीडन ने ये डिसीजन लिया है, उसको देखते देखते ग्रेट ब्रिटेन भी स्टार्ट कर देगा। इस युग में जहाँ पे AI और डिजिटल सब चीजों पे चल रहा है, वहां पे लिखना मतलब अगर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, रोज रात को सोने के पहले एक किताब ले लेना और दिन भर क्या क्या हुआ सिर्फ स्क्रिबल करना, लिखना ऐसा फटाफट, ये हुआ,
1: डायरी लिखने की बात,
0: डायरी लिखने की, सिर्फ लिख देना, ऐसा देखो ऐसा लिख देना, 5 मिनट में लिखने सो जाओगे, तो इतना शांति मिलती है, तुम लिखते हो नहीं
1: जी। कुछ लोग हैं कि अपने हाथों से नहीं लिख पाते हैं, वो पैरों की अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं?
0: तो हम कहने के लिए इसको हैंड राइटिंग कहते हैं, लेकिन ये हैंड राइटिंग नहीं है, ब्रेन राइटिंग है। जो ब्रेन में है वही आएगा,
1: वही
0: तो जिनके पास हाथ नहीं वो पैर से लिखेंगे, सो तो ब्रेन राइटिंग है ना, तो ब्रेन के अंदर की परिभाषा है, सबकॉन्शियस जो है
1: जी। ब्रजेश जी, क्या करियर काउंसलिंग और व्यक्तित्व विकास या शिक्षा के क्षेत्र में भी इसमें कुछ किया जा सकता है?
0: जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो बड़ा हैंडराइटिंग एक्सट्रोवर्ट है, छोटे हैंडराइटिंग इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट वाले लीडरशिप में जाएंगे, स्मॉल हैंडराइटिंग वाले रिसर्च में जाएंगे। ऐसे 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसमें हम हैंडराइटिंग से करियर एंड रिक्रूटमेंट, मतलब लोगों को जॉब पे रखना है
1: जी।
0: उसने MBA इन फाइनेंस करके आया है, MBA इन मार्केटिंग, वो तो डिग्रियां मिल जाती हैं
1: जी,
0: वो कितना भी मेरे सामने टाई वाई पहन कर प्रेजेंट कर ले, मैं इसकी हैंडराइटिंग देता हूँ, उसको कितना मार्केटिंग आएगा, कर पाएगा कि नहीं
1: जी,
0: ये हमको पता चल जाता है।
1: ब्रजेश जी, आजकल क्या सबको एक सिग्नेचर की आवश्यकता है, तो सिग्नेचर भी क्या वही उस माइंडसेट को दर्शाता है उसके?
0: ग्राफोलॉजी में हमेशा कहते हैं, जब मैं सिखाता हूँ ये साइंस, तो हैंडराइटिंग एक समंदर है और सिग्नेचर आपका समंदर का एक ग्लास है।

0: लेकिन वो ग्लास में जो मैंने पानी लिया है वो समंदर का ही पानी है, यानी कि आप ही है। लेकिन सिग्नेचर जो है आपकी पब्लिक इमेज है, पब्लिकली आप अपने आप को कैसा दर्शाना चाहते हैं। देखो, हमको बचपन से बहुत गलत बात बताई गई है कि सिग्नेचर ऐसा करो ताकि लोग रीड ना कर सके, पहचान ना सके, इसके लिए हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेकिन ये तो ग्राफ है, तुमने इधर कॉम्प्लिकेशन किया तो जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन है। और ये
1: हाँ
0: पब्लिक इमेज है, अगर आपका सिग्नेचर कोई पढ़ नहीं पा रहा है, वो इंसान आपको कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएगा। और आप बोलते रहेंगे, अरे इंसान समझ ही नहीं रहे, लोग मुझे समझते ही नहीं है, तुमने कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, तो वो दुनिया किधर समझेगी आपको कि क्या है। देखो, सिग्नेचर में सिर्फ आपने नाम लिखा तो बट ऑब्वियस तुमको तुम्हारे बारे में ही दिमाग में ख्याल आता, मैं ही मैं हूँ, आप समझे,
1: जी जी
0: यानी कि मेरे इर्द गिर्द में जिंदगी में मेरे से बढ़कर और मैं जो सोचता हूँ, माई वे और हाई वे कहते हैं हम लोग, ऐसा होता है।
1: जी, क्या ग्राफोलॉजी का जो इस्तेमाल है नौकरी के चयन में किया जाता है और किसी व्यक्ति की ट्रस्ट को, विश्वसनीयता को जांचने में किया जाता है, तो क्या वैज्ञानिक रूप से ये उचित है?
0: देखो, अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये साइंस ही है, ये साइंस है, इसको बहुत बहुत विस्तार में स्टडी की गई थी। जैसे कि कोई चीट करता है, एग्जाम्पल, ये कहां से पता चला ना, तो बहुत सारे चीटर्स लोग की हैंडराइटिंग ली गई थी। अभी 1000 के सैंपल में अगर मैंने देखा तो कुछ पैटर्न्स उसके अंदर कॉमन थे, तो वो पैटर्न्स को स्टडी किया गया, फिर दूसरों के अंदर चेक किया गया, तब जाके ये साइंस, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल साइंस है, कोई थियोरेटिकल है ही नहीं इसके अंदर।
1: अभी आपने चीटिंग की बात की, तो कई बार किसी को लेटर लिखा जाता है, धमकाया जाता है, तो उसकी भी अलग से स्टडी होती है और उनकी हैंडराइटिंग पहचानी जाती है, हैंडराइटिंग के बारे में पता किया जाता है कि ये किस माइंडसेट का व्यक्ति है। क्राइम में इसका इस्तेमाल किया जाता
0: हाँ,
1: है?
0: क्रिमिनोलॉजी करके एक
1: जी
0: विशेष टॉपिक है कि आपकी हैंडराइटिंग से हम टेररिस्ट हो, सीरियल किलर हो, या एकदम क्रिमिनल माइंडसेट वाला हो, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, जो दबाव करके लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से दबा के लगते हैं कि पेज ही फट जाता है,
1: जी जी
0: तो वो काफी सारी चीजें जिससे हमको क्रिमिनल मेंटेलिटी, सुइसाइडल मेंटेलिटी पता चलती है।
1: क्या ग्राफोलॉजी और फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस में कोई अंतर है?
0: देखो, फॉरेंसिक का हिस्सा है ग्राफोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस का मतलब ही होता है कि किसी का डेथ हुआ तो उसके शरीर में क्या केमिकल्स से लेके सब वो सब स्टडी करके, कभी मरा, कैसा मरा, क्या है, और समझो उसने कुछ लिख कर गया है कहीं पे, उसकी किताबें
1: जी
0: पढ़ी
1: जी
0: है,
1: जी
0: कुछ है, उसने सुइसाइडल नोट डाल दिया या किसी कुछ ऐसा, तो पता चलता है ना कि व्यक्तित्व में क्या था, इसने खुद ने किया क्या है, तो हैंडराइटिंग उसका एक हिस्सा बनता है कि उससे हम स्टडी कर सकते हैं पूरा का पूरा।
1: तो क्या हम इसे अंतिम सत्य मान सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, लिखावट देख करके, सिग्नेचर देख करके, उसे हम सच मान सकते हैं?
0: कल सुबह उठकर आपकी जिंदगी में कोई घटना घटी, बहुत ही बड़ी घटना घटी, तो आपका विचार बदल जाएगा, तो आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बदलने के चांसेस बहुत हाई है। तो हम ये कभी नहीं कहते कि इंसान ऐसा ही रहेगा,
1: जी
0: कल कुछ घटना घटी तो उसका पैटर्न चेंज हो सकता है।
1: जी राजेश जी, कई बार कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, आप इसे सुधारिए, तो वो लिख लिख करके, प्रैक्टिस कर हैंडराइटिंग सुधर जाती थी, तो उसे आप क्या कहेंगे?
0: इसे हम ग्राफोथेरेपी कहते हैं, थेरेपी का मतलब सुधार लाना। तो अगर कुछ लिखावट से हमको नेगेटिव पैटर्न पता चलते हैं, तो कुछ तो लिखावट होगी जिससे पॉजिटिव चीजें पता चलती हैं, है ना, दोनों व्यक्तित्व तो दोनों तरफ है। तो अगर हमने ये एग्जिस्टिंग पैटर्न को चेंज करवाया प्रैक्टिस करके और वो पॉजिटिव पैटर्न्स उसमें डालना स्टार्ट किए, सिंपल है, सिंपल अगर हम बताएंगे, जो भी लोग सिग्नेचर सीधा करते हैं
1: जी
0: वो स्टेबल रहते हैं, एवरेज रह जाते हैं।
1: जी
0: अगर यही सिग्नेचर को मैंने ऐसा 30 डिग्री ऊपर की तरफ प्रैक्टिस करवाया तो ग्रोथ है, तो ग्राफ चेंज किया
1: जी
0: मैंने, जो सीधा ग्राफ था उसको मैंने चेंज
1: चेंज
0: करवाया, लेकिन
1: किया
0: प्रैक्टिस लगता है,
1: जी
0: जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो व्यक्तित्व वैसा बदल जाएगा। तो एक है कि विचार बदलो, हैंडराइटिंग बदलेगा, एक घटना घटी आपका विचार बदल गया,
1: जी
0: हैंडराइटिंग बदला, और
1: जी
0: दूसरा है कि हैंडराइटिंग बदलो तो विचारधारा बदलेगी।
1: राजेश जी, अपने काम को सही दिशा देने के लिए, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: सो हम हमेशा कहते हैं कि सक्सेस मंत्र क्या है, टैलेंटेड पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, स्मार्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, पीपल दोज मैनेज देयर टाइम, मतलब जो भी अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग करता है वही सक्सेसफुल होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, थिंक इट,
1: थिंक
0: यानी
1: इट,
0: इंक इट,
1: इंक इट,
0: डू इट
1: डू इट
0: एंड रिव्यू इट।
1: एंड रिव्यू इट।
0: तो रोज रात को सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है, तो उसको थिंक करके उसको इंक करो, लिखो, तो यहां से जब वो कागज पे उतरता है तो हमारा ब्रेन खाली हो जाता है
1: जी
0: और हमको मालूम पड़ता है फिर अगले दिन उठना है और क्या क्या लिखा है, भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, इसको कर लो, और शाम को बैठकर रिव्यू करो यार क्या हो गया और क्या
1: नहीं
0: बाकी
1: हुआ
0: है,
1: जी
0: उसको अगले दिन में डाल दो।
1: हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो श्रोता हैं, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस हैंड राइटिंग के विषय में, झुकाव के विषय में, दबाव के विषय में?
0: देखो, हम इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर व्हाट यू राइट, यू कैन राइट व्हाट यू वांट टू बी। मतलब आप जो लिखते हो वो आप हो, जो भी लिखा है। तो आप जो बनना चाहते हो वो लिख लिख कर बदल सकते हो।

0: पॉजिटिव पैटर्न्स पता लगाकर उसको प्रैक्टिस
1: जैसे
0: करना
1: अभी आपने
0: स्टार्ट करो,
1: बताया
0: हाँ, तो आपका पैटर्न चेंज होना स्टार्ट होगा।
1: जी, ग्राफोलॉजी की जो दुनिया है बहुत ही अद्भुत है, जहां हमारी लिखावट को, हमारे व्यक्तित्व को समझने में आसानी होती है, एक संभावित संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि किसी व्यक्ति के स्वभाव या मानसिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वैज्ञानिक प्रमाण, संदर्भ और विशेषज्ञ की सलाह हमेशा महत्वपूर्ण होती है, और इसलिए सलाह लेते रहिए, अपनी हैंडराइटिंग सुधारते रहिए। राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ग्राफोलॉजी के विषय में इतनी सारी जानकारियां दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोक

20 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी

दोस्तों, मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी, तो कभी बारिश, तो कभी ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास होता रहता है। मौसम सिर्फ बाहर का नहीं बदलता, बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है। इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हम भी स्वागत करते हैं आप सबका अपने घर आंगन के प्यारे से शो में। तो मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। तो मौसम की हम बात जब कर रहे हैं, तो क्यों ना एक मीठा सा प्यारा सा गीत हो जाए मौसम पर, जो आपके लिए हम खूबसूरत सी नज़र पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सितमगढ़ फिल्म से गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। और अब बात कुछ करते हैं ख़ास। आज का दिन है बहुत ही ख़ास, बेहद ख़ास, यानी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कहते हैं किताब किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन शिक्षा पूरी पीढ़ी की तस्वीर बदल सकती है। साक्षरता का मतलब सिर्फ अपना नाम लिखना नहीं है, इसका मतलब है सोच पाना, समझ पाना, सवाल पूछ पाना। आज की दुनिया में करीब 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी साक्षरता नहीं है, और 6 करोड़ से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और इसके अलावा इस साल 2026 में इसकी 60वीं वर्षगांठ है, और थीम आज की है यानी कि साक्षरता दिवस की, लोक पृथ्वी और स्मृति के लिए साक्षरता। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं, बल्कि शिक्षा के महत्व को समझाना और हर व्यक्ति तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाना है। साक्षरता से ही किसान नई तकनीक सीखता है, महिला अपना हक समझती है और देश तरक्की करता है। ज़रा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना नाम खुद लिखता है, किसी को चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, किसी फॉर्म को बिना मदद से भरता है, या फिर अपने अधिकारों को समझ पाता है, तो उसके अंदर कितनी सारी खुशियां और आत्मविश्वास की एक नई रोशनी जगती है, और यही साक्षरता की असली ताकत है। साक्षरता हमें केवल अक्षर पहचानना नहीं सिखाती, बल्कि सही और गलत में फ़र्क करना, अपने फैसले खुद लेना और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना भी सिखाती है। आज के डिजिटल दौर में साक्षरता का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है। जैसे किताब और कागज़ के साथ साथ मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों को समझना भी ज़रूरी है, ताकि कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में पीछे ना रह जाए। आइए इस साक्षरता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक छोटा सा प्रयास किसी के पूरे जीवन को बदल सकता है, और अक्षर से, ज्ञान से, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से ही बनता है एक बेहतर समाज।

आप सुन रहे थे अपने अपनी फिल्म से गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की। क्या कभी चोट, दर्द या किसी बीमारी के बाद हमें अपने शरीर की सामान्य गतिविधियां करने में परेशानी हुई है? ऐसे समय में फिजियोथेरेपी हमारी ज़िंदगी को फिर से सामान्य लय में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर साल 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य खास तौर पर लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यानी कि फिजियोथेरेपी केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चोट के बाद शरीर की ताकत और गतिशीलता वापस लाने में और पाने में, सर्जरी के बाद रिकवरी के मदद करने में और कई शारीरिक समस्याओं से बचाव में भी सहायक हो सकती है। नियमित व्यायाम, सही मुद्रा और शरीर की ज़रूरत के अनुसार गतिविधियां हमें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करती हैं। आज के समय में हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। घंटों बैठकर मोबाइल में और कंप्यूटर पे हमें काम करना, उसका अधिक इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पर बैठकर ही हम हर समय काम करते हैं। शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण गर्दन, कमर और कंधों में दर्द जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। अपने शरीर की आवाज़ सुने, सक्रिय रहें और ज़रूरत पड़ने पर योग्य फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सक्रिय और खुशहाल जीवन की मजबूत नींव होती है और ज़िंदगी खुशनुमा और भी खूबसूरत बनती जाती है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार को फिल्म थी तेरी कसम। और दोस्तों बात करते हैं आज महापर्व पर्युषण पर्वारंभ जैन धर्म की। आज हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्युषण पर्व के आरंभ की। पर्युषण केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह आत्मचिंतन संयम तप और आत्मशुद्धि का अवसर है। इन दिनों व्यक्ति बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा विराम लेकर अपने अंदर झांकने का प्रयास करता है। पर्युषण का संदेश है अपने विचारों वाणी और कर्मों को बेहतर बनाना। इस दौरान उपवास ध्यान प्रार्थना स्वाध्याय और संयम जैसे आध्यात्मिक कार्यों पर विशेष ध्यान देते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची शांति केवल सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि मन की शुद्धता और अच्छे कर्मों से मिलती है। पर्युषण के दौरान क्षमा का विशेष महत्व है। हम अपने द्वारा जाने अनजाने में किसी को पहुंचाए गए दुख के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हैं। यही भावना आगे चलकर मिच्छामी दुक्कडम के रूप में व्यक्त होती है। तो आइए इस पावन पर्व के अवसर पर हम भी अपने भीतर के क्रोध अहंकार लोभ और नकारात्मकता को कम करने का संकल्प लें। किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगे, दूसरों की गलतियों पर भी दिल साफ करें। पर्युषण पर्व हमें यही सुंदर संदेश देता है कि अपने भीतर बदलाव लाइए, मन को निर्मल बनाइए और प्रेम करुणा और क्षमा के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए।

और दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ हंसी मजाक करें पर किसी का दिल ना दुखाएं। जिंदगी में हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी हंसी और एक प्यारी सी मुस्कान कभी कभी पूरे दिन का मूड बदल देती है। दोस्तों के साथ मजाक हो, परिवार के साथ हंसी मजाक हो, या फिर सहकर्मियों के साथ हल्की फुल्की बातचीत, ये पल जिंदगी में खुशियों के रंग भर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मजाक वही अच्छा है जिसमें सब हंसें, किसी एक का दिल ना दुखे। अक्सर हम मजाक करने के बाद ही कह देते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था या कर रही थी। लेकिन जिस इंसान को हमारी बात से ठेस लगी हो, उसके लिए सिर्फ मजाक नहीं होता। किसी के रंग रूप, शरीर, आर्थिक स्थिति, परिवार या किसी भी निजी कमजोरी को मजाक का विषय बनाना शायद हमें कुछ पल के लिए हंसा दे, लेकिन सामने वाले के दिल में वो बात लंबे समय तक टिक जाती है। तो क्यों ना ऐसा मजाक करें जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, अपनापन हो। अपने दोस्तों के साथ मज़ेदार किस्से साझा कीजिए, बचपन की शरारतें याद कीजिए और ऐसी बातें याद कीजिए जिन्हें सुनकर हर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और अगर कभी मजाक करते हुए महसूस हो कि सामने वाला असहज महसूस या उदास हो गया है, तो तुरंत रुक जाइए और दिल से सॉरी कह दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनता है। तो आज का संदेश बहुत ही सरल है, हंसी बांटिए, खुशियाँ बांटिए, लेकिन किसी के आंसू की वजह मत बनिए, क्योंकि सबसे अच्छा मजाक वही है जिसके बाद चेहरे पर मुस्कान भी रहे और अपनापन भी रहे।

0: दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgourgia@gmail.com।
1: सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

जी हाँ दोस्तों, और इस तरह से शुक्रिया शुक्रिया हम भी आपको कहेंगे जब आपके खूब ढेर सारे हमारे पास मैसेज आएंगे। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं के कौशल विकास की। आज हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समाज की प्रगति से साथ सीधे जुड़ा है। महिलाओं का कौशल विकास यानी ऐसी कला या योग्यता जिसके जरिए हम अपने ज्ञान का काम में बदल सकते हैं। सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, ब्यूटी, वेलनेस, कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक, हस्तशिल्प, खेती, व्यवसाय या कोई भी आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण या हर तरह का कौशल महिला के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। और महिलाओं का कौशल विकास इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। जब एक महिला अपने हुनर से कमाई करती है तो उसके भीतर आत्म

पड़ता है और वह अपने परिवार के फैसले में भी अपनी अधिक मजबूती से भाग ले पाती है। और ख़ास तौर पर आज के युग में महिलाओं के लिए घर बैठे ही सीखने और काम करने के अनेक अवसर हैं। और इसके अलावा जैसे कि सोशल मीडिया और ई कॉमर्स जैसे माध्यमों के छोटे व्यवसाय को भी बड़े बाजार तक पहुंचाना आसान बनाया है। लेकिन कौशल विकास का मतलब सिर्फ रोजगार पाना नहीं, ये महिलाओं को अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने का अवसर भी देता है। तो एक प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर महिला अपने बच्चों और आसपास की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए ज़रूरत है कि परिवार और समाज महिलाओं की प्रतिभा को पहचाने, उन्हें सीखने के अवसर दे और उनके हुनर पर भरोसा करे। तो याद रखिए, एक महिला का कौशल सिर्फ उसकी अपनी ताकत नहीं बनता, बल्कि पूरे परिवार और समाज की तरक्की का आधार भी बनता है। तो आइए महिलाओं को केवल अवसर देने की बात ना करें, बल्कि उन्हें सीखने, आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनाने और ज़रूरी कौशल और विश्वास भी देना बहुत ज़रूरी है।

और अब बात करते हैं कुछ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। केंद्र सरकार की एक नई पहल प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश में चुनिंदा कृषि प्रधान जिलों में खेती की खास तौर पर आधुनिक तकनीक अपनाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, फसल विविधीकरण और भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को बेहतर प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और कृषि से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना का मकसद केवल अधिक उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि किसानों की लागत कम करना और खास तौर पर उनकी आय बढ़ाना और खेती को अधिक टिकाऊ बनाना भी है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अगर आप किसान हैं तो आपके परिवार में कोई खेती से जुड़ा है या अपने नज़दीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में इस योजना की जानकारी ज़रूर लें और देखें कि इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि

और दोस्तों, अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। होगी आपसे अगली मुलाकात, तब तक के लिए अपनी दोस्त सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50

0: 10,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं। 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
1: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 75,676 पर और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 23,662 पर था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister also flagged off freight train services from New South

0: ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ मैं, आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों 1:10 हो गए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। और आज

कदम रखा भारतीय सिनेमा में। वो ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो कि भारतीय सिनेमा को देता है पारिवारिक और भावुक कहानियों को देखने का एक नया नजरिया। अब पारिवारिक कहानियों का मैंने जिक्र किया है तो आप समझ गए होंगे ना कि आखिर हम बात किस प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि भाई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम पारिवारिक फिल्मों की बात करें, खूबसूरत रिश्तों की बात करें, तो एक ही प्रोडक्शन हाउस है जो कि इस तरह की खूबसूरत कहानियों को रचता है, बनाता है, और वो प्रोडक्शन हाउस और कोई नहीं बल्कि राजश्री प्रोडक्शन हाउस है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ताराचंद बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शन की पहली पेशकश के बारे में। जी हाँ, और वो फिल्म थी आरती। तो करेंगे इस फिल्म से जुड़े और भी बातें आपके साथ। पहले सुनते हैं इसी फिल्म से लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, और उनके साथ हैं मोहम्मद रफ़ी साहब।

जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फणी मजूमदार के निर्देशन में बनी फिल्म आरती के बारे में। अगर हम इस फिल्म के कलाकारों की बात करें तो मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार और शशिकला जैसे मंझे हुए कलाकारों से सजी हुई ये खूबसूरत फिल्म। और ये फिल्म दरअसल एक नाटककार प्रफुल्ल देसाई के गुजराती नाटक संसार सेनानी पर आधारित थी। और इस फिल्म की जो कहानी थी वो निस्वार्थ प्यार, पारिवारिक उलझनों के इर्द गिर्द घूमती है। और इस फिल्म में हम बात करें तो ये वो एक ऐसी फिल्म जिसने मीना कुमारी जी के करियर को एक ऐसा ऐतिहासिक साल बना दिया कि उनकी लाइफ का सबसे कहीं ना हैपनिंग ईयर था वो, क्योंकि ये वो साल था जब उनकी फिल्म आरती, साहब बीबी और गुलाम और ये जो फिल्में हैं स्टारडम के शिखर पर उन्हें पहुंचा दिया था इस फिल्म ने। इस फिल्म से जुड़ी और भी बातें, और भी किस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं लता जी और रफी जी की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आपके साथ हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। हम बात कर रहे हैं फिल्म आरती के बारे में। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर आरती का है और इस किरदार को निभाया है मीना कुमारी ने, और वो एक सीधी साधी, बहुत ही ज़्यादा दयालु और अपने उसूलों पर चलने वाली डॉक्टर का किरदार उन्होंने निभाया, जो कि काफ़ी जो दौलत, शोहरत, ऐशो आराम की बजाय चुनती हैं अपनी लाइफ में सच्चे प्यार को और इंसानियत को। और यहीं से जो उनका ये एक चुनाव था, उसी के बाद से जो फिल्म की कहानी है वो एक अलग मोड़ लेती है, क्योंकि आरती की जो सगाई होती है वो डॉक्टर प्रकाश यानी कि अशोक कुमार जी से तय होती है, लेकिन प्रकाश के अहंकार को देखकर वो रिश्ता तोड़ देती हैं और चुनती हैं अपने लिए एक गरीब लेकिन ईमानदार और काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी एक युवक, दीपक यानी कि प्रदीप कुमार को। उनसे शादी करती हैं, गरीब होते हैं तो उनके फैमिली में भी वो आती हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से दीपक की भाभी के साथ उनके झगड़े होते हैं, जिस तरह से उनकी भाभी जो उन्हें परेशान करती हैं और उस

0: उन स्थितियों में किस तरह से आरती अपने आप को ढालती है, किस तरह से अपने परिवार को संभाल कर एक करके आरती आगे चलती है, उन्हीं पूरे जो झंझावत है उन्हीं में दिखा करके ये कहानी को बनाया गया है। और यही फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी ने एक ऐसे महिला का दर्द दिखाया है जो उस सादगी को पर्दे पर उतारा जो कि बिल्कुल उन्होंने बखूबी उतारा है। और ये वो फिल्म थी जो कि मीना कुमारी जी की जिंदगी में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वही दौर था जब मीना कुमारी जी अपने करियर में अपने अभिनय के शिखर पर थी, और उस दौरान 1963 में जब फिल्म फेयर पुरस्कारों के नॉमिनेशन हुए तो उस वक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 3 नॉमिनेशन ऐसे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी जी का नाम लिखा गया था। और ये अपने आप में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अनोखा नामांकन है, क्योंकि फिल्म आरती, साहब बीवी और गुलाम और मैं चुप रहूंगी, इन तीनों फिल्मों के लिए मीना कुमारी जी को नॉमिनेशन मिला था। लेकिन लास्ट में उन्हें जो अवार्ड मिला वो साहब बीवी और गुलाम के लिए मिला। लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो कि उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित रही। तो दोस्तों लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज़ में।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म आरती के बारे में। फिल्म आरती, जिसमें हमने बताया कि आरती जो कि है वो एक डॉक्टर का किरदार उन्होंने निभाया है और उनकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आते हैं जसवंती से मिलने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, जसवंती वो किरदार जिसे निभाया शशिकला ने इस फिल्म में, जो कि उनके पति दीपक यानी कि प्रदीप कुमार की के बड़े भाई की वाइफ हैं, यानी कि उनकी भाभी हैं। और जसवंती का जो किरदार दिखाया है इस फिल्म में, एक लालची और बहुत कड़वा बोलने वाली, बात बात पर ताने मारने वाली एक स्वार्थी भाभी का किरदार उन्होंने निभाया। और जब डॉक्टर आरती यानी कि मीना कुमारी शादी करके इस गरीब परिवार में आती हैं तो जसवंती उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। और उनका जो किरदार था वो इतना नेगेटिविटी लिए हुआ था और पूरा जो फैमिली ड्रामा था वो पूरा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। और आरती ने जिस तरह से सहनशीलता के साथ में इस मतलब जसवंती की कड़वाहट को लिया है और जिस तरह से उस पूरे फिल्म में उन दोनों के बीच में दिखाया गया ना, वो बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म को एक इमोशनल रूप दे देती है। और जहाँ अगर हम

करें इस फिल्म में शशिकला की एक्टिंग की, तो भाई शशिकला ने जिस तरह से अदाकारी की है, जिस तरह के एकदम खतरनाक टाइप के डायलॉग्स बोले हैं, और जिस तरह की भाव भंगिमा या कहीं कि हाव भाव उनके थे, उसे देखकर वाकई में दर्शकों को उनसे नफरत होने लगी थी। और यही उनके एक्टिंग की सबसे बड़ी जीत थी, यानी कि वो पूरी तरह से और किरदार में डूब गई थी। और शायद यही वजह थी कि इसी नेगेटिव रोल में उनकी इस एक्टिंग के लिए जो फिल्म फेयर के अवार्ड था 1963 में, उसमें उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और इस किरदार के बाद में वो टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हुई।

दोस्तों जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म आरती के बारे में। हमने इस फिल्म की कहानी, उसके कलाकारों के बारे में बात की, लेकिन अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात ना करें तो वाकई में बात अधूरी रहेगी, क्योंकि रोशन साहब का जो संगीत है उसने वाकई में कमाल किया है इस फिल्म में। और एक तरह से हम कहेंगे कि 1960 का जो शुरुआती दशक है वो रोशन साहब को एक बहुत ही गंभीर और क्लासिकल जो म्यूजिशियन था, जो संगीतकार थे, वो माना जाता था। लेकिन आरती फिल्म जब आई और इसके गानों ने जिस तरह से धूम मचाई, तो उसके बाद में ये साबित हो गया कि जो रोशन साहब हैं वो आम जनता के लिए सुरीले और कॉमर्शियल जो हिट गाने हैं वो भी बना सकते हैं। और इस फिल्म के संगीत ने उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, और जिसके बाद उन्होंने ताज

0: साल।
1: जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम आज बात करें फिल्म आरती के विषय में। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन शाह जी, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी के साथ। और इन्होंने ये संदेश भेजा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से हमारे पास ये अगला संदेश आया है और उसको भेजने वाले हैं गुजरात वीरगांव से अजित भावसर जी। और इन्होंने इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारी हम तक दी है और लिखते हैं कि प्रफुल्ल देसाई के नाटक संस्कार लक्ष्मी पर ये आधारित है और डॉक्टर आरती गुप्ता का किरदार इन्होंने निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया वीर अजित जी, आपने खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाई। अगला संदेश हम तक आया मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, जगुताई, संचित वयाल, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख का ये संदेश है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। गुरमीत सिंह मीता जी जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से जुड़े हैं। अशोक कुमार सहगल जी, संदीप मकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से। मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून जुड़े हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और ये अगला संदेश हम तक एक बार फिर से आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं अजीत भावसर जी। और इन्होंने और भी बहुत सारी जो जानकारी हमें इस फिल्म से जुड़ी हुई दी हैं और लिखते हैं कि सदाबहार अभिनेता अशोक कुमार जी नॉर्मली एक पॉजिटिव किरदार निभाया करते थे लेकिन इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव प्रेमी का किरदार निभाया है। बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। और भी बहुत सारी उन्होंने जानकारी दी हैं लेकिन वक्त की कमी के चलते हम पूरा संदेश नहीं ले पाएंगे। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, इश्फाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ, नीरोफा, फातिमा हमारे साथ जुड़े हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी का। और ये अगला संदेश छत्तीसगढ़ भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन जी का हम तक ये संदेश आया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार और ईशा छीपा, ईशान छीपा का हम तक ये संदेश आया। इन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक दी है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। ये अगला संदेश वीरगांव गुजरात से अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी का है। और ये वापस इन्होंने बहुत सी जानकारी हम तक दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पॉल, विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों जो अगला संदेश है उसको हम तक पहुँचाने वाले हैं राजकुमार।

जी प्रमोद कुमार टूडी के साथ गांव फरांसी जिला हिसार से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, हीरामणि वर्मा, दत्तरंगी भट्टापारा से हम तक जुड़े हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से, और प्रेम सागर शुभलता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश इन्होंने अमृतसर से हम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए सभी श्रोता हम तक जुड़े, और कार्यक्रम में आज हमने बात की आरती के अनसुने किस्से, सुरीले निगमों नगमों के बारे में। तो चलते चलते मैं आप सभी के लिए रोशन साहब का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ, मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में। फिर हम आपसे कभी फिर मिलेंगे। अभी मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, लेकिन जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि 2:30 पर आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी रेनू लेकर कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती हूँ ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव, पहला चौनी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए तो वख-वख विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया, कहीं पत्र रखे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अल तो श्रीलंका के 3 दिन सरकारी दौरे पर होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस संसद मैंबर राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में जारी किया गया समन रद्द करने से इनकार किया। अब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, नौकरियों के बेहतर भविष्य का राह खोल दी है। भारत

0: posta Beogradičkara Kanal Yatri Reisela Jo Ahir Airport de Beograd'ı Andivasi Kekranı Rahçı Yer Grimna Jordi'le Meşru Fikri. Sosyalı Kaçma Sündürün Kardı Pradan Mentri Ve Parada Kamerayı Ke Logistics Sektörde Tesina Vedrata Çanına Paya.
1: 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में
1: देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: सर्वोदय ऐसा तो हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 की विदेशी पर इस साल तक लटकता रहा। इसके उल्ट पिछले दहाके दौरान तेजी से किए गए अमल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स इको सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया, जो देश के हमारे क्षेत्रों के जीवन रेखा बजे काम कर रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और तो श्रीलंका के तीन दिनों के सरकारी दौरे पर होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चुनाव तय कि लंबे समय तो चली आ रही भाईवाली के डूंगे इतिहासक दहाके पुराने संबंधा के श्रीलंका गुवाहाटी पहला तो महासागर पहल तहत भारत के सब तो महत्वपूर्ण भाईवाल में एक है। उन्होंने कहा कि वह श्रीलंका की लीडरशिप में अर्थपूर्ण विचार वटांदरे की उम्मीद करते हैं। दौरे दौरान रक्षा मंत्री श्रीलंका के रहने वाले भारतीय भाईचारे के मैंबर भी गलबात करेंगे। दोनों के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सत्तर पैंतरी मार्च टाइम की घटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के जख्मियों ने मुलाकात

का बैठे राहुल गांधी ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिस हेतु विरोध कार्रवाई शुरू करने संबंधी मजिस्ट्रेट अदालत के हुक्म को चुनौती दी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट सामने सुनवाई में 6 हफ्ते की मुलतवी करने अपने 2021 के निर्देश में जारी रखा जिस नाल राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करने का समय रखा है। यह मामला राफेल सौदे बारे राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणी खास मानहानि शिकायत में जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के सूबे के नशा की अलामत को काबू करने के इसके खात्मे में ठोस कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए बीजेपी के बुलारे गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की निगरानी हेठ नशे का गठिया बंद हो रहा है पर फिर भी इसे रोकने ड्रग माफिया विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्री भाटिया ने संगरूर जिले में वापरी घटना का भी जिक्र किया जिन्हें एक निवासी ने पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशे की गुणवत्ता विरुद्ध कार्रवाई करने की बेनती की थी पर उन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के आगू ने धमकी दी थी कि मंत्री तो माफी मंगने का तो बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। खबर आकाशवाणी से सुनते हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये के वाद्य वक्फा के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका

0: करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर आजम ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के तीन अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने न्यू सनंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू GNPT से मालबरदार रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज़ किया। ये ट्रेन अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वजीर आजम मोदी ने एक बड़े इज्तम से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने मालबरदारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हुसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: वजीर आजम ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तसव्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई ना हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निज़ाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। आज ये मालबरदारी की राहदारी तेजी से तरक्की करते हुए भारत के लिए अशद जरूरी हो गई है। बाद में वजीर आजम नवसारी का दौरा करेंगे और वहां BJP के नए AI से लैस हाईटेक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मुंबई में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुअस्सर सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसेस में होता है। चार रोजा ये फेस्ट 11 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये सातवां एडिशन है, जो आज मुंबई में शुरू हो रहा है। इस फेस्ट का आगाज 2020 में किया गया था। GFF कायदाना प्लेटफॉर्म का एक बैन अल-अक़वामी तसव्वुर बनकर उभरा है, जहां पॉलिसी साज, ज़ाब्तकार, मरकजी बैंकों से वाबस्ता शख्सियतें, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियों से वाबस्ता शख्सियतें, सरमायाकार, तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियतें और दीगर आलमी मुतालिक अफरीकैन मुस्तकबिल की मालियात को शक्ल देने के लिए यकजा होते हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। ये समन 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की रायजनी पर हतके इज्जत के एक केस में जारी किया गया था। जस्टिस NR बोरकर की इनफरादी बेंच ने जनाब गांधी की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मैजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने अलबत्ता मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस समाअत को 6 हफ्ते तक मुलतवी करने की 2021 की हिदायत को बरकरार रखा। इस तरह जनाब गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मोहलत मिल गई है। इस केस का ताल्लुक राफेल सौदे के बारे में जनाब गांधी की 2018 की रायजनी पर एक हतके इज्जत की शिकायत से है। उनके वकीलों ने इसे एक बेजा शिकायत करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर हजारिका की आवाज ने आसाम और शिमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। दिफाई साजो सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। आज खानगी का बैनुल अक्वामी दिन है। ये दिन अफराद, बिरादरियों और मुआशरों के लिए खानदगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल खानदगी के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानदगी, कुर्राए अर्ज और खुशहाली। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 1966 में

0: Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Madhya Pradesh, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana till tomorrow. Meanwhile, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeast India are expected to witness thunderstorms accompanied by lightning during the next 2 days. In Bihar, receding water levels in the Ganga, Gandak, Kosi and Son rivers have brought some relief to flood-affected people. However, the situation remains serious with water levels still rising in some downstream areas. We have a report.
1: The water level of the Ganga has fallen by 12 to 25 centimeters at various places in Buxar, Bhojpur and Patna. However, a rising trend continues in several downstream areas of Munger and Bhagalpur. More than 27 lakh people across 13 districts are facing a severe flood situation. In Patna, 11 blocks are affected. Several panchayats in the Diyara areas of Maner, Danapur, Raghupur and Panapur remain surrounded by flood waters following the rise in the Ganga, Son and Punpun rivers. Connectivity between several villages in Mokama, Athmalgola, Fatuha and Bakhtiarpur and the district headquarters has also been disrupted. Chief Minister Samrat Chaudhary visited flood-affected areas of Vaishali and Saran. Nidhish Ree for Akashvani News.
0: In archery, India won 2 gold medals at the 2026 World Para Archery Series Leg 3 in Ahmedabad today. Harvinder Singh and Vijay Sundi clinched their 3rd consecutive World Para Archery Series title, defeating Slovakia 6-2 in the Para Recurve Men's Doubles Final. The duo had earlier won gold at the Bangkok and Nove Mesto stages, defeating Chinese Taipei and Ukraine respectively. In the Para Women's Recurve Doubles, Pooja Jatian and Bhavna Chaudhary settled for silver after losing 6-0 to China in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
3: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के

0: भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
0: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
0: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे newsonair app और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
4: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
5: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे है और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
1: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश

0: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। और हाजिर हूं हर बार की तरह आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार को लेकर। जी हाँ, कहते हैं ना कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हर भाषा, हर एहसास और हर दौर की आवाज़ बन जाती है। कभी शौक अदाओं की आवाज़, तो कभी दर्द में डूबी हुई आवाज़, कभी मोहब्बत की शरारत, तो कभी जिंदगी को खुलकर जीने का एहसास। जी हाँ, आज हम आपके इस कार्यक्रम में उस महान गायिका की आवाज़ को दस्तक दे रहे हैं जिनकी आवाज़ के बॉलीवुड के संगीत को अपनी कई रंगों में रंग दिया था और जिनका नाम हमेशा हमारे जुबान पर रहता है, जिनका आज जन्म दिवस भी है। जी हाँ, तो हमारा इशारा हमारे सुनने वाले श्रोताओं तक तो पहुंच ही गया होगा। जी, रहना है तो कुछ तो आपको कहना है, जल्दी से फ़ोन उठाएं सही जवाब के साथ। जो हमें सबसे पहले जवाब देगा वो हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। और हमें मैसेज करने के लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, iprradiodelhi@gmail.com iprradiodelhi@gmail.com। और आज जिस गायिका की हम बात कर रहे हैं उन्हीं की आवाज़ का एक खूबसूरत नगमा हम सुनाने जा रहे हैं, तो जल्दी से गेस कीजिए और फटाफट सबसे पहले जो भेजेगा, समझ गए ना, तो जल्दी भेजिएगा।

जी हाँ, हमने भी आपका इम्तिहान ले ही लिया और बहुत सारे मैसेज हमें आए और सही जवाब जिसने सभी ने दिया है वैसे तो, लेकिन सबसे पहले जिसने जवाब हमें सही दिया है वो है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। वैसे तो हमारे सभी श्रोता फेवरेट हैं, ये तो एक बहाना है आपसे जुड़ने का और आपसे कुछ तो करवाना है। जी हाँ, सही जवाब है आशा भोसले जी। और हमें इसी तरीके से अनीता जी ने भी मैसेज किया है और बताया है कि आशा जी हैं, और हीरामणि जी ने भी बताया हमें छत्तीसगढ़ से, और ताज मोहम्मद जी ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी ने जो बताया सबका जवाब एकदम सही है। और हम आज बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की, जिनका जन्म आज ही के दिन 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मराठी परिवार में हुआ। प्रसिद्ध गायक पिता दीनानाथ मंगेशकर से उन्होंने और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी ने बचपन से ही अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली। आशा जी 9 वर्ष की ही थी जब पिता का स्वर्गवास हो गया। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने और उनकी बहन लता जी ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया, जिसके कारण वो पुणे से मुंबई आ गई। लेकिन दोस्तों, आशा जी का फिल्मी सफर शुरू से ही

समरस नहीं था, उस दौर में कुछ चुनिंदा आवाज़ों का ही दबदबा था। और कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ें होती हैं वो कही जाती हैं कि भाई हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, तो वो दौर था और उस दौर में कुछ चुनिंदा आवाज़ ही थी जो गाई जाती थी। लेकिन आशा जी ने हार नहीं मानी, उन्होंने हर तरह के गाने गाए, गज़ल हुई, भजन हुए, कव्वाली हुई, रोमांटिक क्लासिकल कंपोजिशन, फिर क्या था, धीरे धीरे इतनी वर्सटाइल, कहते हैं ना एक आवाज़ होती है जिसमें खूबसूरती होती है, हर तरह की अदाकारी होती है, उनकी ताकत बन गई। शायद यही वजह है कि आशा जी को किसी भी जोनर में बांधना नामुमकिन था। उन्होंने 14 से ज़्यादा भाषाओं में भी गीत गाए हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई कुछ इस तरह, और चुरा लिया सभी का दिल।

बिल्कुल दिल चुरा लिया इस गाने ने सभी का। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो श्रोता है ना वो पक्का पक्का अपने घर बैठकर मस्त गाने सुनकर खुश हो रहे होंगे और उनको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। और आपने जब हमें मैसेज भेजते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों एक समय था जब प्रसिद्ध गायिकाओं का दौर था, वह आशा जी का गाने का मौका नहीं मिल पाता था। उनके करियर को बनाने में ओपी नैयर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ओपी नैयर और आशा जी की जोड़ी ने हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसी एनर्जी पैदा कर दी कि आशा जी की प्लेबैक क्वालिटी और नैयर साहब की कॉम्पोजिशन में रिदम और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का तालमेल बेहद शानदार रहा इस खूबसूरत नगमे के जैसे।

आवाज, मीठी आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। और ये फिल्म है नया दौर, लेकिन ऐसा लगता है ना कि अभी का दौर है, क्योंकि ये ऐसे गाने हैं जो हमेशा दिलों में छा जाते हैं। जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार आज रैना तंवर के साथ। श्रोताओं, आज आशा भोसले जी के करियर की अगर हम बात करें तो एक और बेहद खास अध्याय शुरू हुआ जब आर डी बर्मन साहब यानी हमारे प्यारे पंचम दा के साथ जब इनकी जर्नी शुरू हुई। पंचम दा के साथ आशा जी की जो म्यूजिकल केमिस्ट्री थी वो हिंदी फिल्म संगीत का एक नया मॉडर्न स्टैंड एक साबित हो गया। उनके सॉन्ग्स में जैज, वेस्टर्न, इंडियन क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी का खूबसूरत मिलन देखने और सुनने को मिलता था। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो हर तरफ से उनकी लाइफ, कहते हैं ना, सबकी परफेक्ट नहीं होती, तो ऐसा उनके साथ भी हुआ। 16 वर्ष की उम्र में गणपत राव भोसले के साथ उनका विवाह हुआ था मगर वो विफल रहा। और पंचम दा से मिलने के बाद दोनों की जो प्रोफेशनल जुगलबंदी थी ना, उसके साथ साथ निजी जुगलबंदी भी खूबसूरत हो गई। तो 1980 में दोनों ने विवाह किया, लेकिन आज हम उनके रिश्ते से ज़्यादा बात करेंगे उनके संगीत की, जिसने जनरेशन को डांस फ्लोर पर लाकर खड़ा कर दिया।

जी हाँ, क्या एनर्जी थी इस गाने में। और यही आशा जी की खासियत थी कि वो हर सुर में इस तरह की जान डाल देती थी, एक एटीट्यूड डाल देती थी कि वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि आशा जी एक अच्छी मिमिक्री अदाकारी भी थी, और कहा जाता है कि कुकिंग उनका पसंदीदा शौक रहा है। एक बार एक द टाइम्स ऑफ इंडिया के साक्षात्कार ने पूछा कि अगर आप गायिका ना होती तो क्या करती। आशा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अच्छी रसोईया बनती, बॉलीवुड के सारे लोग उनके हाथों से बना कढ़ाई गोश्त और बिरयानी कहते हैं ना, बेहद पसंद करते हैं। और इसके चलते वो कई रेस्टोरेंट की संचालिका भी रही। और कुछ लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल की ही गायिका हैं ये, लेकिन थी रही, मगर ऐसा नहीं है। गज़ल और बहुत सारी कव्वाली गज़ल जो है, उनकी नज़ाकत भरे गीतों का को गाकर उन्होंने ये बात भी झूठी साबित कर दी कि वो सिर्फ वेस्टर्न ही गा सकती हैं। उमराव जान की जो ये गज़ल है, एक छोटा सा उनकी आवाज़ का एक उदाहरण है कि देखिए कितनी खूबसूरत आवाज़ है, और हर तरह की आवाज़, हर तरह के नगमे ये गा सकती हैं।

जी हाँ, आशा जी की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। गुरमीत सिंह जी का मैसेज हमें आया है और उसी तरीके धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल, ईशान पूजा, तुलसी मस्कीन जी का होस्ट रहना दवर जी, आशा भोसले जी हैं ये, और आप प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम देवांगन जी का जवाब भी आया, भवूर बसना राधेश्याम जी, और इसी तरह मसूर हसन जी, अनिल मोहन जी ने शानदार प्रस्तुति के लिए आप बधाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। उषा और टिल्लू मधु जी, धर्मेंद्र छिप्पा जी का हमें मैसेज आया है उसी तरीके से, मस्कीन दादा, और उन्होंने लिखा है कि मस्कीन जी ने लिखा है कि नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी, और गाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। प्रकाश वर्मा जी का मैसेज आया है, गुरमीत सिंह जी का आया है, असलम खान जी का आया है, धर्मेंद्र छिप्पा, संजय ढींगिया जी का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए। और आज कहते हैं ना कि हमारे बीच वो नहीं रही लेकिन उनके गीत किसी न किसी का प्यार, किसी के कॉलेज के दिन, दोस्तों के साथ बिताए शान और रेडियो की आवाज़ बनकर हमेशा दिलों में उतर जाते हैं। जाते जाते बस यही कहूँगी कि खुश रहें, कुछ करें ऐसा जो दिल को दे सुकून और दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट। एक अच्छे नागरिक बने मगर उससे पहले एक अच्छा इंसान बने। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त। तो सुनना ना भूलें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, और मुझे यानी रैना तंवर को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और एक अच्छे नागरिक बनिएगा, और दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिएगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम मैटिनी मेलोडी, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं प्रीति त्यागी।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 3 बज चुके हैं और वक्त हुआ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ का। मैटिनी मेलोडीज़ कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं उस गोल्डन एरा के वो गीत, वो यादें जो कि हमारे दिल में कहीं कोने में छिप गई हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम के तहत आप सभी की वो यादों को करते हैं ताज़ा। तो आज भी हम लेकर आए हैं उस दौर का एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा जिसे शायद आप इस गीत को सुनें तो शायद पहचानें। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के।

जी दोस्तों, बिल्कुल आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना और उम्मीद करती हूँ इस गीत को सुनकर आपको बहुत कुछ याद आया होगा। वैसे बहुत कुछ की तो मैं अगर बात करूँ तो हम जब भी इस गीत को सुनते हैं तो हमें याद आते हैं एक छाते के नीचे नरगिस जी और उनके साथ राज कपूर साहब। और ये जो चीज़ है ये हमें रोमांस, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सारी चीज़ों की याद दिला देती है। जी दोस्तों, हमारे दिल के किसी कोने में उस दौर का छुपा हुआ प्यार, आज हम अब आपको ले चलेंगे अपने उसी दौर में, उसी इरा में जहाँ से मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की शुरुआत हुई। 1940 का वो दौर जहाँ सिनेमा ब्लैक एंड वाइट था लेकिन मोहब्बत के रंग जो थे वो बेहद सच्चे थे। जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरे में बैठा हुआ दर्शक अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर पर्दे पे सिर्फ और सिर्फ दो दिलों की सादगी को देखा करता था। जी हाँ दोस्तों, वो सादगी जो कि बहुत कुछ भुला देती थी, परेशानियों को भुला देती थी, और वो सादगी जिस प्यार में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शोर, कोई इजहार आम नहीं था, मोहब्बत की जो ज़बान थी वो कम थी, निगाहों से ज़्यादा बयां होती थी। जी हाँ दोस्तों, आप याद कीजिए वो दौर, जब अंदाज का वो दौर जहां दिलीप कुमार और नरगिस जी की जोड़ी ने पर्दे पे कदम रखा तो स्क्रीन पर चाहत के साथ साथ एक अनकहा सा एहतराम भी नजर आया। तो लीजिए सुनते हैं वही खूबसूरत से प्यार से बसा लता जी और रफी जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अंदाज से।

अंदाज एकदम जुदा हो जाते हैं जैसे ही वक्त बदलता है। और वैसा ही हुआ जैसे हमने आपको बताया कि 1940 में जो इश्क था उसमें एक सादगी थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कदम पहुंचे सन 1950 के दशक में, यानी कि इंडियन सिनेमा का वो गोल्डन पीरियड जहां रोमांस सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था बल्कि इसमें शायरी थी, बारिश की बूंदें थी और समाज से टकराने का हौसला भी आ गया था। जो आशिक लोग थे उनके अंदर थोड़ा हौसला भी आया था और इसी ट्रांसपेरेंट और रूहानी इश्क की सफ़र में हम थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं सन 1952 की आई फिल्म जाल के बारे में, जहां सीधे साधे प्यार का वक्त नहीं था। गुरुदत्त साहब की फिल्म जाल, जिसमें देवानंद साहब ने रोमांस को एक नया एंटी हीरो वाला अंदाज दिया, जिसमें समुद्र के किनारे गीता बाली के लिए जाल बिछाता वो हैंडसम हीरो, जहां मोहब्बत में एक कशिश भी थी और थोड़ा सा खतरा भी। साथ ही साथ हेमंत कुमार की आवाज़ में जब देवानंद जी गाते तो मज़ा ही आ जाता, और जो ये इश्क था उसमें एक अजीब सी खुमारी तैरने लगती थी।

जी दोस्तों, एक वो वक्त जब देवानंद साहब ने जाल बिछाया और जो प्यार था वो थोड़ा सा एक अलग तरीके का था। लेकिन अगर बात करें हम उसी दौर में गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान की

चुपचाप खड़े रहना, जहाँ एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने, और बिना बोले आंखों ही आंखों में उनका जो इश्क है वो अपनी हदें पार कर जाता है। तो दोस्तों लीजिए सुनते हैं उसी दशक का वो अधूरा और गंभीर सा प्यार, गीता दत्त की आवाज़ में।

जी दोस्तों, अलग अलग जगहों पे इश्क अलग अलग तरीके से। जी, एक तरफ जहाँ रोमांस छाते की बूंदों में था, एक जगह पर रोमांस समंदर के किनारे जाल में था, वहीं एक तरफ ये रोमांस जो कि चुपचाप बिना कुछ कहे आँखों ही आँखों में था। लेकिन रुकिए दोस्तों, जो हमारे 50 का दशक था वो इतना छोटा नहीं था कि 3 फिल्मों में सिमट जाए, बल्कि उस दौर की हवाओं में तो बहुत कुछ था। इतने सारे नगमे मोहब्बत की दास्तानें थीं कि इस सफ़र को अगर हम बयां करने लगें तो हमारा वक्त छोटा पड़ जाएगा। अगर हम, जैसे कि हम 50 के दशक की बात कर रहे हैं और राज कपूर और नरगिस जी के उस आखिरी फुल फ्लेज्ड रोमांटिक फिल्म की बात ना करें तो थोड़ा सा मज़ा अधूरा रह जाएगा। और वो फिल्म चोरी चोरी, जिसे हम भूल ही नहीं सकते, जहाँ एक तरफ था एक बेबाक पत्रकार, वहीं दूसरी तरफ थी एक ज़िद्दी और अमीर लड़की। दोनों का सफ़र, आपस की नोकझोंक और फिर रात के अंधेरे में वो मीठा सा इकरार, है ना दोस्तों? इस गीत को जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और वो कहते हैं ना, जब दो लोग एक होना चाहते हैं तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने की साजिशें करने लगती हैं, और वो इस गीत को सुनेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा।

जी दोस्तों, प्यार का जो एक रूप है, जो रंग है, वो पल पल हर फिल्म के साथ बदलता रहा। और अगर हम बात करें जहाँ ये प्यारा सा नोक झोंक भरा प्यार, जो कि फिल्म चोरी चोरी में था, वहीं दूसरी तरफ एक और फिल्म आई 1957 में, जिस फिल्म में देवानंद और नूतन दोनों का जो अंदाज था वो बहुत ही शरारती चुलबुला रोमांस था। और अगर हम बात करें उस वक्त के रोमांस में, जो इनका चुलबुलापन था वो उस वक्त के जो एक शहर की मिडिल क्लास का जो प्यार था, उसको पर्दे पर पूरी तरह से जिंदा किया। जहाँ उनके बीच में थोड़ा थोड़ा नटखटपन था, थोड़ी छेड़ाछाड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत सा प्यार था इस फिल्म पेइंग गेस्ट में। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म पेइंग गेस्ट से ये खूबसूरत सा गीत, जिसको सुनकर वाकई में आपको देवानंद और नूतन का वो नटखटपन, वो चुलबुलापन आंखों के सामने तैर जाएगा।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम में ये मैटनी मेलोडीज़ के साथ में, और आज हम बात कर रहे हैं अपने उस गोल्डन एरा के रोमांटिक दौर के बारे में, जब रोमांस अलग तरह से होता था, यानी कि उसमें कुछ फूहड़ता नहीं होती थी बल्कि सिर्फ बातों से, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार होता था। और उसी दौर के कुछ खूबसूरत नगमे हम आप सभी के लिए चुनकर लाए और कुछ चुनकर संदेश भी हम तक आए हैं, जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी जी, और अगला संदेश के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है वीरगाम गुजरात से अजित भावसार जी ने, और उनके साथ हैं प्रमीला भावसार, और लिखते हैं, इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे गाने आप पेश कर रही हैं, और श्री 420 फिल्म अंदाज, और लिखते हैं कि ऐसे गोल्डन एरा के गाने सुनकर हम भी उस दौर की फिल्म से रोमांटिक सॉन्ग्स में खो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका बहुत खूबसूरत संदेश के लिए। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगले संदेश के साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं अजीत जी, और लिखते हैं कि लाजवाब गीत, गीता बाली जी और देवानंद साहब की रोमांटिक भूमिका याद आ गई। जाल में सोने की तस्करी होती है जी, बिल्कुल, और साथ ही साथ उनके प्यार की भी एक दूसरे से अदला बदली हो गई। बहुत खूब। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, और सुदामा नगर खांडवा से हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप के साथ। अगला संदेश एक बार फिर से आया है अजीत जी का, और लिखते हैं, आज का प्रोग्राम सुपर डुपर मस्त गोल्डन एरा के गीत कलेक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी बहुत खूबसूरत संदेशों के लिए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गोल्डन एरा के उन रोमांटिक सॉन्ग्स को बात कर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम 50 के दशक की बात कर रहे हैं और फिल्म पतीता के बारे में बात ना करें तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी, है ना। 1953 में आई फिल्म पतीता, सबसे रोमांटिक गीत इस फिल्म का हम आपको अभी सुनवाने वाले हैं, और इस फिल्म में देवानंद और उषा किरण के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही लाजवाब रही। हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़ में वो गीत, जिसमें हसरत जयपुरी जी के शब्दों ने बहुत ही सादगी और बहुत ही गहराई के साथ इस गीत को पिराया है, और इस गीत में जिस तरह से वायलन और बांसुरी की तान को इस्तेमाल किया गया है ना, वाकई में वो गीत हमारे दिल में सीधे उतर जाता है। तो दोस्तों, ये थे गोल्डन एरा के रोमांटिक गीतों के बारे में आज हमने बात की, और ये जो सफ़र है हमारा आगे भी चलेगा, फिर किसी दिन आगे के और गोल्डन एरा के हम जो गीत हैं वो लेकर आएंगे, लेकिन वक्त की कमी है और अभी वक्त मुझे कह रहा है कि मुझे आपसे लेनी होगी अनुमति। तो खूबसूरत सा गीत मैं आपके लिए छोड़ के जाने वाली हूँ हेमंत कुमार जी और लता जी की आवाज़ में, उसे एंजॉय कीजिए, खुश रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और अपने आसपास में भी खुशियों को यूं ही बिखेरते रहें। तो मुझे अनिप्रीति को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: आज की गुफ्तगु मुस्तकबिल के इम्कानात हैं। बज़्म ख़वातीन में आज हम आपके साथ बात करेंगे ख़वातीन के बदलते किरदार, समाजी सोच और नई जिम्मेदारियां। एक ऐसे दौर में समय जहां औरत सिर्फ वक्त के साथ ही नहीं बदल रही बल्कि वक्त को भी बदलने में अपना एक अहम किरदार निभा रही है। इस अहम और असरी मौजू पर गुफ्तगु के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ एडिटर मोहतरमा नरगिस सुल्ताना साहिबा। आप एक सरकारी इदारे में हैं, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं।
1: शुक्रिया।
0: और साथ ही हमारे साथ मारूफ न्यूज रीडर, ब्रॉडकास्टर, सहाफी मोहतरमा हुमा रिजवी साहिबा भी मौजूद हैं, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे बीच मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की PhD स्कॉलर मोहतरमा शमा कायनात साहिबा, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं।
2: शुक्रिया।
0: तो चलिए आज के मौजू पर कोशिश करते हैं कि आज उस खातून का जिक्र करें जिसे हम सब आज कहीं ना कहीं जी रहे हैं। तो मोहतरमा हुमा रिजवी साहिबा, आप सीनियर सहाफी भी हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। अगर हम आज की औरत की बात करते हैं तो आज की औरत अपना जो किरदार है उसकी तारीफ खुद ही बयान कर रही है। जो सिर्फ उससे एक उम्मीद की जाती थी, उन उम्मीदों को आज कहीं ना कहीं वो सेट करने की कोशिश करती है कि हाँ मैं आज ऐसी हूँ। क्या कहेंगी आप?
3: बिल्कुल हकीकत भी है कि वो अपने आप को साबित कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो जितना प्रेशर समाज का और तालीम में एक जद्दोजहद के साथ आई है, समाज से भी उसने अपना मुकाबला किया है और उसके बाद घरों के प्रेशर, अपने इमोशनल और प्रोफेशनल उसमें बैलेंस करना, बड़ी मेहनत से आई है वो इस मंजिल तक। बहुत आसान नहीं था और आज हर शोबे जिंदगी में औरतों ने अपना एक मकाम बनाया है, किसी भी फील्ड में देखा जाए तो, कि जहाँ पर ऐसा समझा जाता था कि ये काम सिन्फ़े नाजुक के लिए मुश्किल है, उसमें भी उन्होंने पूरी तरह मेहनत के साथ अपना मकाम बनाया है। एक तस्वीर भी नहीं उस वक्त किया जा सकता था, एक तस्वीर खुद औरत खुद भी उस दौर में ये समझ नहीं सकती थी कि हम ख्वातीन का ये भी एक माहौल बन गया।
0: बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा भी था तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मोहतरमा नरगिस सुल्ताना साहिबा, जिस तरह से बात की कि आज औरत ने अपना मकाम खुद ही बनाया है, हर फील्ड में अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं या फिर पर्सनल आइडेंटिटी की बात करते हैं उसकी, कि वो खुद क्या है या फिर किस शोबे में क्या कर रही है, क्या दोनों के दरमियान जो एक तवाजुन वो बिठाने की कोशिश करती है उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज आप सोचती हैं?
1: आज के जमाने की लड़की के पास चैलेंज नहीं है, वो चैलेंज कबूल कर चुकी है, मैं ये समझती हूँ
0: जी।
1: लेकिन जब वो घर से निकलती है तो बाहर का चैलेंज लेती है, घर को वो छोड़ देती है मेरे हिसाब से, और जब वो घर में आती है तो घर का चैलेंज लेती है
0: जी।
1: तो दोनों चीजें बड़ी खूबसूरती से निभा रही है। डायरेक्टर लेवल पर पूरे डिपार्टमेंट को संभाल रही है, एक छोटे लेवल की भी नौकरी कर रही है, वहाँ उसका घर नहीं होता, बाहर के लोग ही उसके सब लोग होते हैं, उनसे काम निकलवाना जानती है, वो खुद काम करना जानती है। आजकल की लेडी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, समाज के साथ साथ चल रही है, लीड भी कर रही है वो।
0: बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आप दोनों की बातों से जो बात निकल कर आई है कि आज की जो खातून है वो हर फील्ड में अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही है और तवाज़ुन भी बिठाती है। शमा कायना साहिबा, आपके पास आना चाहूंगी, आपने दोनों की राय भी जानी। अगर हम समाज की बात करें और आज के खातून के बदलते हुए किरदार की बात करें तो समाज ने आज क्या उसके बदलते हुए किरदार को कबूल कर लिया है?
2: जो औरतों का बदलता हुआ किरदार है, समाज उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? इस बात से जो इन्होंने कहा है कि समाज तो खुश है कि औरतें घर भी संभाल रही हैं, साथ ही साथ अपना काम भी संभाल रही हैं, पर इससे औरत के ऊपर जो डबल बर्डन पड़ रहा है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो अगर इस बारे में हम सोचते हैं तो एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए मर्द और औरत दोनों को ही। अगर औरत बाहर से काम करके आ रही है, घर में भी काम कर रही है, तो उसके जो घर में जो लोग हैं, जो उसके हस्बैंड है, एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करके काम को बराबर डिवीजन करना चाहिए, पूरा बर्डन ना पड़े एक किसी औरत पर।
0: यानी आप ये कहना चाहती हैं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो घर भी संभाल रही है और बाहर भी संभाल रही है।
1: आज ये वाली चीजें बदली हैं। आज जब जो लेडी वो बहुत से बड़े अच्छे अच्छे इदारों में अच्छी पोस्टों पर भी है और अपने घर की जरूरतों को भी पूरा करने निकली है, तो उसके जो फैमिली के लोग हैं

0: वो सब उसके साथ मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। अगर खातून काम करके ऑफिस से आई है तो उसको ये नहीं है कि आते ही वो किचन में लग जाएगी। मैं खुद अपनी मिसाल दे रही हूँ, मेरे घर में खुद मेरे शौहर जो है चाय बना कर रखते हैं, किचन में बाद में जाते हैं।
1: यानी कहीं ना कहीं आज वो सोच बदल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। हुमा रिज़वी साहिबा, जब आज हम औरत की कामयाबी की बात करते हैं तो फैसले खुद करने की जो उसकी सलाहियत है, क्या आज के दौर में आप ये देख रही हैं कि उसका जो पैमाना है वो बदल चुका है पूरी तरह से? खवातीन आज हर फील्ड में इन सबको देखते हुए अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल करती है। और ये ख्वाहिश तो शायद बहुत सालों से रही। बहरहाल कुछ तो माजी को भी देखना पड़ेगा
1: जी,
2: कि जो एक इख्तियारी हैसियत आज की औरतों में जो आई है, एक वो दौर था जो वो अपने घरेलू जिंदगी और फैसले घर के हद तक महदूद थे और समाज में उनकी वो आवाज़ नहीं होती थी, लेकिन आज खुलकर हर जिंदगी के शोबे में ये खवातीन आई हैं। तो इसके लिए तालीमी बेदारी शुरू हुई पहले तो
0: जी,
2: अगर तालीम नहीं है तो वो रोजगार भी कुछ इस किस्म का नहीं कर सकती थी।
1: बिल्कुल, हम अक्सर ये बात देखते हैं कि जब तालीम की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे खानदान रहे हैं जो तालीम दिलाना चाहते थे ख्वातीन को, अपनी बेटियों को, बहनों को। ये कह सकते हैं जराए कम थे या फिर मुआशरे में वो सोच नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ तो सरकार की भी पूरी कोशिश है कि हर लड़की तालीम याफ्ता होनी चाहिए। हम जब सरकार की योजनाओं की बात करते हैं तो उसमें भी आज खवातीन कहीं आगे नजर आती हैं, क्योंकि वजीर आजम का भी ये एक विजन है कि आत्मनिर्भर खातून वो लगातार आगे बढ़ती रहे। तो क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए ऐसा है ना कि इर्तका समाज में तरक्की होती है, बदलता रहता है माहौल। मैं बता सकती हूँ कि हमारे ज़्यादातर अगर कोई लड़कियाँ जॉब भी कर रही हैं तो ये देखा जाता है कि वो खाली टीचिंग लाइन में चली जाएं।
1: जी,
2: क्योंकि एक लिहाज से वो गर्ल्स कॉलेज में सेफ रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे मुआशरे में सोच बदली, मुआशरे की सोच भी बहुत ज़रूरी थी।
1: बिल्कुल,
2: आज का मर्द जो है अगर उसकी मिसेज काम कर रही है तो वो साथ में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे उस जमाने के मुकाबले में। तो उसकी वजह यह है कि मुआशरा पूरा बाखबर है और हमारी खवातीन भी बहुत ज़्यादा बाशऊर और बाखबर है। शादी के बाद जॉब करना ये ज़रा मुश्किल हुआ करता था।
1: जी जी,
2: लेकिन जैसा वक्त आगे बढ़ता चला गया
1: जी,
2: लेकिन आजकल ऐसा नहीं है।
1: शमा कायना साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। देखते हैं हम अक्सर कि आज की जो औरत है उसे सोशल मीडिया ने अपनी एक अलग आवाज़ दी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि कामयाब, खूबसूरत और प्रोडक्टिव, इन सब का एक जो संगम चाहती है, जो अपने आप को परफेक्ट दिखाने की एक कोशिश है, क्या ये प्रेशर है या उसकी खुद की एक चाहत?
3: सोशल मीडिया में जो औरतें पॉडकास्ट में हों या फिर जो रील्स वगैरह या फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपने आवाज़ को बुलंद करती हैं, अपने आवाज़ को लोगों तक पहुंचाती हैं, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनका नज़रिया ऐसा रहता है कि वो एक अच्छी भी दिखे, एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो लोगों के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये कहीं ना कहीं एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्शन है जो सोसाइटी औरतों को बताती है कि आपको इंटेलिजेंट के साथ साथ खूबसूरत भी दिखना है। उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट किया जाता है कि आपको खूबसूरत दिखना है, आपको इंटेलिजेंट होना है। तो ये एक सोसाइटल प्रेशर है जिसको हैंडल कर रही हैं औरतें, और मैं चाहूंगी कि उसको एज अ प्रेशर ना समझ के उसको अपने कामयाबी का एक जरिया समझ करके आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। और जहां तक रही खूबसूरती की बात, तो खूबसूरती सिर्फ वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता जो आप देखते हैं लोगों को, खूबसूरती होती है कि आप सोचते हैं, आपकी जहनी सोच क्या है।
1: बिल्कुल, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा विजन है ख्वातीन के लिए कि ख्वातीन तालीम हासिल कर सकें, हर फील्ड में उनका अपना एक अलग मकाम हो। और जब वजीर आजम की हम बात करते हैं तो वजीर आजम का ये एक बहुत बड़ा विजन है। क्या कहना चाहेंगे आप?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विजन है, लक्ष्मी योजना है,
1: सुकन्या योजना
0: लेकर आई है सरकार, उसमें ख्वातीन फायदा भी उठा रही है, समाज की खिदमत ख्वातीन बहुत काम कर रही है।
1: बिल्कुल, ख्वातीन बहुत ज्यादा काम कर रही है और इसमें हमारी सरकारी योजनाएं जो है ये भी अपना एक अहम किरदार निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे हमें एग्जाम्पल भी नजर आते हैं जिनके बारे में जानकर, जिनके बारे में पढ़कर आज जो खातून कुछ करना चाहती हैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हैं और अपना एक अलग मकाम बना सकती हैं, आगे पहुंच सकती हैं।
2: हमारे मुल्क में भी प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं और प्रेसिडेंट भी हैं और हर महकमे में तादाद बढ़ती जा रही है, IAS IPS जैसे किरण बेदी भी रही हैं, अब आप ये देखिए साइंटिस्ट भी हैं।

0: भी नजरअंदाज नहीं किया जा
1: जी
0: सकता। शमा कायना साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं 2050 की, तो आप खातून को 2050 में किस तरह से देखना चाहेंगी?
1: मैं ख्वातीन को जो 2050 में देखना चाहती हूँ, उसकी शुरुआत हमें आज से करनी होगी। ख्वातीन आगे बढ़ेंगी जब वो अच्छा एजुकेशन लेंगी, जब वो समाज की रुकावटों को तोड़ के आगे बढ़ेंगी, अपने लिए सोचेंगी। तो फहमिदा रियाज जी ने बहुत अच्छा एक नज्म, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है।
0: वाह।
1: कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है,
0: वाह।
1: पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपने करने कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा,
0: बहुत खूब,
1: जो
0: बहुत
1: होगा
0: बहुत
1: देखा जाएगा।
0: बहुत, वाह क्या बात है जी।
1: बताइए।
0: मतलब ये है कि जो तुम्हारा अपना एक विजन है किसी भी खातून का, या फिर उसके जो ख्वाब हैं, उसको एक बड़ा आसमान आज मिल चुका है। पंख आपके
1: बेशक।
0: पास हैं, उड़ना आपको है। आप कहाँ तक उड़ पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या कहेंगे इस पर?
1: बिल्कुल, उड़ना चाहिए। और बल्कि मैं ये कहती हूँ कि जो हमको मिल चुका है,
0: जी
1: हमें कोई खातून ऐसी नजर आ रही है जो उड़ना चाहती है लेकिन उसके परवाज नहीं मिल रही है, हमें उसको भी गाइड करना चाहिए, उसकी मदद करेंगे किसी भी तरह से। वो
0: बिल्कुल
1: बढ़ेगी तो समय हम बढ़ रहे हैं।
0: आपने सही कहा। हुमा रिज़वी साहिबा,
1: जी
0: जिस
1: बिल्कुल
0: तरह से नरगिस साहिबा ने अभी कहा, हमें मदद करनी चाहिए उन ख़वातीन की जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको पंख देने चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि आज की जो खातून है, क्या वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप को मनवाना चाहती है और अपने आप को हर फील्ड में साबित भी करना चाहती है, तो क्या वो अपने अंदर एक दायरा बना के रहे या फिर और ख़वातीन को अपने साथ लेकर चले आगे?
2: ये ज़रूरी है कि हम महदूद अपनी ज़ात तक न रहें तो बेहतर है। तो हमें लोगों को लेके इस तरह चलना चाहिए कि ख़वातीन की तरक्की हो, उनके साथ पूरे समाज में एक औरत का मकाम ज़्यादा बने, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन एनजीओ जो चला रही हैं, तो वो लोग बहुत इसमें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ शोबे में जो लड़कियां हैं उनको मददगार साबित हो रही हैं। अगर इंडिविजुअली भी आप किसी के साथ कुछ मदद कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाएं, तो आपको पूरी तरह से उनको हेल्प करनी चाहिए।
0: बिल्कुल नरगिस साहिबा, अगर हम नए दौर की लड़कियों की बात करें
1: जी
0: तो करियर उनके लिए सबसे पहली
1: जरूर,
0: एक चीज़ मानी जाती है।
1: करियर तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के ज़माने में, और घर से उसको मॉरल सपोर्ट मिल गया है,
0: बिल्कुल
1: पहले करियर ही होना चाहिए। शादी जब तक वो तालीम पूरी नहीं होती है या जो वो बनना चाहती है, जब तक ना बन जाए तो उस बाद की चीज़ें हैं। आज के ज़माने में लड़की बहुत आगे बढ़ गई है और वो अपना फ्यूचर देख रही है कि पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, पहले कुछ मुझे कुछ बनना है और अपना मकसद हयात वो पूरा करना है, उसके बाद वो फिर जिंदगी के दूसरे मामला देख रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। मैं भी तो खुद
0: जी
1: वर्किंग हूँ, मैं और मैं घर भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ, तो मुझे पहले कभी एहसास हुआ था लेकिन आज के ज़माने में नहीं होता है।
0: जी जी कायना साहिबा, एक घर में एक बेटा भी है और बेटी भी है, क्या आपने कभी दोनों में ये महसूस किया कि एक को मिलता है दूसरे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है?
1: जी बिल्कुल, जेंडर गैप बहुत देखने को मिलता है और ये आज भी है। ये बहुत दुख की बात है कि जेंडर गैप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी है सोसाइटी में, चाहे वो उसका फॉर्म अलग हो गया हो, उसको देखने का तरीका अलग हो गया हो, नज़रिया अलग हो गया हो, लेकिन वो आज भी है। और ये शुरुआत हमारी फैमिली से होती है,
0: जी
1: सोशलाइजेशन से होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे घर में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे घर में जो लड़कों को खाना मिलता है, जो लड़कियों को खाना मिलता है, डिफरेंट होता है।
0: खास तौर से पहले ये देखा जाता है कि लड़के को क्या पसंद है खाने में, और
1: बात से
0: लड़की को
1: सहमत
0: बड़े प्यार
1: होंगे,
0: से कह दिया जाता है, बेटा हम तो खा ही लेंगे।
1: और वो इस चीज को मान लेती हैं कि जो मर्द हैं वो पहले खाएं, फिर घर के बुजुर्ग, और उसके बाद जो औरतें होती हैं घर में, चाहे वो बहू हो बेटी हो, वो बाद में खाती हैं लास्ट में, और उसे वो बहुत ही खुशी के साथ करती हैं। और ये खुशी भी एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है कि उसको बताया गया है कि आप इसमें खुश हो, आप सबकी खुशी में आपकी खुशी हाँ, है।
0: शमा की बात से
1: दूसरी
0: थोड़ा सहमत हूँ
1: कि ये ऐसा बहुत सी जगह है, लेकिन कुछ जगह ये बदलाव आ चुका है।
0: जी
1: मेरे घर में बच्चे दस्तरखान लगाते हैं, एक बर्तन धोता है, ड्यूटी लगा रखी है मैंने, वहाँ कोई जेंडर का मैंने नहीं कर रखा है।
0: बहुत
1: और
0: अच्छी बात
1: हाँ,
0: है।
1: लेकिन मैं क्षमा से भी मुस्तफिक हूँ कि वो जो कह रही है यहाँ है,
3: कि पहले लेडीज जो है वो जेंट्स को खिलाएंगी या

0: कोई तकरीब होती है तो जेंट्स खाएंगे फिर लेडीज बाद में खाएंगी, तो ये भी चीज चल रही है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसको दूर हम ही को करना है।
1: हुमा रिज़वी साहिबा, जिस तरह से अभी नरगिस साहिबा ने कहा कि घर में जो एक जेंडर गैप अक्सर लोगों के नजर आता है वो आपके यहाँ नहीं है और ऐसे बहुत सारे घर होंगे, आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि क्या जो एक माँ लड़की की परवरिश करती है, जो उसको सीख देती है, क्या वो लड़के को भी वैसे ही देती है?
2: अब देखिए, ये डिपेंड करता है घर का क्या माहौल है
1: जी,
2: लेकिन ये है कि वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है, वो जमाने नहीं रहे मेरे ख्याल में, मुझे तो ऐसा लगता है। और मेरा ज़ाती तजुर्बा तो जहाँ तक यह है कि जब मेरे बहनें थी भाई नहीं था, मेरे बेटे हैं बेटी नहीं है,
1: जी
2: तो मैं उतना तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे हिसाब से होना यही चाहिए कि आपके ऊपर चाहे वो बाहर से की जिम्मेदारी हो या घर के घरेलू, दोनों को बराबर से काम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि किसके ऊपर कितना प्रेशर किस वक्त है, वरना कोई भी अंडर प्रेशर अगर रहेगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकता।
1: शमा साहिबा, जब भी हम ये देखते हैं कि एक लड़की के लिए जो एक माँ की सोच होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है और लड़के के लिए अलग हो जाती है, अगर लड़की को कुछ खास दिया जा रहा है तो लड़के को आमतौर पर उससे कहीं ज्यादा दिया जाता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में हम तीन बहनें हैं, मेरे घर में भी कोई भाई नहीं है,
1: जी
3: अबू हैं वो बाहर रहते हैं,
1: जी
3: तो हम सारे औरतें हैं। तो जो मैंने देखा है ये मैंने सोसाइटी में देखा है आसपास में कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो खाने को लेकर हो, एजुकेशन को हो, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो। और ये मैं जनरलाइज नहीं कर रही है क्योंकि हर घर का एक जैसा सिस्टम नहीं होता, सभी वुमेन एक नहीं है। तो एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ भी फर्क आता है। यहाँ जो मैंने एक फर्क ऑब्जर्व किया है वो ये है, बहुत सारे घरों में है दोनों, जो लड़का होता है लड़की होती है वो दोनों को ही सेम एजुकेशन दिया जाता है, हर तरह से सही से जो एजुकेशन उनको चाहिए, जिस करियर में जाना चाहते हैं उनको परस्यू करने दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ तबका है जहाँ पे जो लड़का है लड़की है उनके एजुकेशन में फर्क दिखाई देता है, और वो आज भी है। और ये मैं खुद में अपने जो पायलट स्टडी जो मैंने किया है मैं उसके फील्ड के ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक लड़की से मिली जहाँ मैं पायलट स्टडी कर रही थी, वो बहुत ही पहले से उसने 10th क्लास नहीं किया, बीच में ही उसने ड्रॉप आउट कर लिया स्कूल से क्योंकि उसको अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखना था। वहीं पे उसका भाई भी था जिसको परस्यू करने दिया गया आगे एजुकेशन, सेम ऑलमोस्ट सेम एज है, 1.5 साल का फ़र्क था दोनों में। लड़की ने 10th भी नहीं किया, वो फाइनेंशियली कंडीशन को सुधारने के लिए अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए वो जॉब करने लगी एज अ सेल्स असिस्टेंट। उससे मैं पॉलिसीज़ के बारे में जब मैंने उससे बोला कि अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे आपको पैसे भी मिलेंगे, जहाँ आपको लोन भी मिलेगा एजुकेशन का, और आप अपना काम भी कर सकते हो, तो वहाँ पे वो अवेयरनेस नहीं थी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिल रही है, एक तो ये कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन को लेकर के, उसके बाद दूसरे एक जेंडर गैप के लड़कों को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उसको आगे परस्यू किया जा रहा है और इसे नहीं। जब मैं उससे पूछी कि आप क्या बनना चाहती हो, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भाई पढ़ रहा है ना तो वो पढ़ेगा तो और अच्छा होगा ना, इसलिए मेरे अब्बू मेरे भाई पे पैसे खर्च कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन पे लगा रहे हैं।
1: बेदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वहीं जब आज के दौर की हम बात करते हैं तो आज स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं, अगर लड़की ने किसी भी वजह से तालीम हासिल नहीं की है तो अगर उसे खाना बनाना ही अच्छा आता है, उसे अगर सिलाई कढ़ाई आती है तो अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकती है, यानी कुल मिलाकर वो हर तरह से आगे बढ़ सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि जो नई सोच आज ज़माने में है वो सबके पास होनी चाहिए।
2: जी हाँ,
3: जी बिल्कुल,
2: ऐसा है कि आज के दौर में जो इंसान है वो एक बहुत बड़े पस मंज़र में जीता है, अब हमारे जो तकाजे हैं मुआशी तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से किसी भी तबके की औरत हो उसको काम तो करना पड़ रहा है। काम जब कर रही है तो ऐसा नहीं कि वो किसी बहुत लग्जरियस लाइफ के लिए कर रही हो, रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में। और आप ये देखिए खते गुरबत से नीचे भी जो औरतें हैं जो घर में भी काम करने आती हैं और वैसे भी करती हैं, तो उनके जहन में ये बहुत बड़ा एक वो रहा है, कोशिश भी कर रही हैं वो लोग कि वो अपने बच्चों को पढ़ा।
1: नरगिस साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे आप किस जाविये से किस विजन से देखती हैं आज के दौर को, कि नई जिम्मेदारियां और नई सोच आज खातून को कहां रखती है?
0: नई जो सोच है वो अच्छी सोच है और जिम्मेदारियां निभा भी रही हैं और कहीं कहीं निभाने के लिए पीछे हैं। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि

0: ये वो कुछ ना कुछ अब खाने पकाने का काम स्टार्टअप
1: जी
0: कर रही हैं या अपना कुछ सेल कर रही हैं। तो ये सब अवेयरनेस सोशल मीडिया ने उनको बहुत दे दिया है।
1: यानी नई सोच के साथ उसका एक
0: हाँ
1: नया किरदार सामने आ
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है।
0: समान है।
1: चम्मा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: मैं एक एम्पावर्ड वुमेन की तरह से देखती हूँ और एक ऐसी वुमेन को देखती हूँ जो कहीं ना कहीं बाहर आ करके हर फील्ड में विजिबल है, चाहे वो एजुकेशन का हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो। तो मैं यही चाहूँगी कि एम्पावर्ड हूँ और जो हमारे पॉलिसीज और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, वो उन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। औरत और मर्द समाज के दो पहिए हैं, तो दोनों को ही साथ मिल करके चलना है, दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है और आगे बढ़ना है, तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है, एम्पावर्ड हो सकती है।
1: एक खातून लगातार वो आगे बढ़ रही है और अपने हिसाब से हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही का, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और सामीन, आपको बता दें कि हमारे साथ थी मारूफ एडिटर मोहतरमा नरगिस सुल्ताना साहिबा और साथ में मारूफ न्यूज़ रीडर, ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी मोहतरमा हुमा रिजवी साहिबा और जामिया मिलिया इस्लामिया की PhD स्कॉलर मोहतरमा शमा कायनात साहिबा।
3: खवातीन के बदलते किरदार और समाजी सोच, अभी आप इस मौजू पर एक मुबाहिसा सुन रहे थे। निजामत कर रही थी मोहतरमा रेशमा फारूकी। तो समय ये था हमारा आज का प्रोग्राम बज़्मे खवातीन। इस प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। और समय अब अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: 阿萨木邦伊、阿萨木邦察赫、阿萨木邦西闻名。夜上动物旅药朱离阿萨木邦的经济。听众朋友们，继续收听阿萨木邦的民间歌曲。
1: देखो अंधा सो खुमे

शराबी तेरी है उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म के मारे दहके

0: बदले का क्या होगा हाय हाय।
1: 这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे युवा साथी अरशद अहमद।
2: नमस्कार, कैसे हैं आप सब?
1: अरशद, बहुत ही अच्छी बात यह है कि वुमेन T20 एशिया कप चल रहा है और बेहतरीन मुकाबले खेले जा रहे हैं।
2: जी हाँ, इंडिया लीड कर रही है
1: और जिस तरह से भारतीय टीम ने अपना दमखम दिखाया है, अपने जौहर दिखाए हैं, तो उससे तो यही लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हम एशिया कप के चैंपियन तो बन ही सकते हैं। लेकिन अन्य टीमें भी हैं जो बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज दे रही हैं, तो एशिया कप में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, इस पर आपको सुनवाते हैं अरशद की खास रिपोर्ट।

महिला टी20 एशिया कप में पाकिस्तान ने हांगकांग को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी हां, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 143 रन बनाए, जबकि हांगकांग की पूरी टीम 19 ओवर में 71 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मुनीबा अली सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद शावाल जुल्फिकार ने पारी को संभाला। उन्होंने 35 गेंदों पर 47 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। आयशा जफर ने भी 19 गेंदों पर 26 रन की उपयोगी पारी खेली। कप्तान फातिमा सना ने अंत तक नाबाद रहते हुए 24 रन बनाए और पाकिस्तान को 143 रन के स्कोर तक पहुंचने में अहम योगदान दिया। हांगकांग की तरफ से जॉयलिन कौर सबसे सफल गेंदबाज रही। उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट लिए। 144 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की शुरुआत बेहद खराब रही। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर हांगकांग पर दबाव बनाए रखा। कारी चेन ने 47 गेंदों पर 30 रन बनाकर संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और फिर आई नशरा संधु की शानदार गेंदबाजी। जी हां, बाएं हाथ की स्पिनर नशरा संधु ने सिर्फ 4 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट झटके। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में पहला 5 विकेट से ज्यादा का प्रदर्शन रहा। उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने हांगकांग की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम 19 ओवर में सिर्फ 71 रन बना सकी। पाकिस्तान ने मुकाबला 72 रन से अपने नाम किया और इस जीत के साथ ग्रुप ए में से 4 अंक हो गए। ग्रुप ए की बात करें तो भारत 3 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर पहले स्थान पर है। पाकिस्तान 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। थाईलैंड के 3 मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक हैं, जबकि हांगकांग अपने 3 मुकाबले हार कर बिना किसी अंक के साथ 4th स्थान पर बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में टीम सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी। हांगकांग के खिलाफ बल्लेबाजी में सुधार के साथ साथ गेंदबाजी ने भी प्रदर्शन किया। इस जीत की सबसे बड़ी स्टार रही नशरा संधु, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो पाकिस्तान ने हांगकांग को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया, जबकि हांगकांग का एशिया कप अभियान यहीं समाप्त हो गया। वहीं दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो महिला टी20 एशिया कप में आज बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की टीम आमने सामने होंगी। मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच

0: महत्व सिर्फ एक जीत या हार तक सीमित नहीं है, दरअसल यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने का मौका है। जी हां, ग्रुप बी में श्रीलंका अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ पहले ही शीर्ष पर है, वहीं बांग्लादेश और यूएई दोनों के खाते में 2-2 अंक हैं। बांग्लादेश ने 2 में से 1 मैच जीता है और 1 हारा है, जबकि यूएई का भी रिकॉर्ड 1 जीत और 1 हार का है। बांग्लादेश ने टूर्नामेंट की शुरुआत इंडोनेशिया को 71 रन से हरा कर की थी, लेकिन अपने पिछले मुकाबले में श्रीलंका से 4 विकेट से हार गया। दूसरी तरफ यूएई की शुरुआत में श्रीलंका ने 9 विकेट से हराया था, लेकिन यूएई ने वापसी करते हुए इंडोनेशिया को 6 विकेट से मात दी। अब समीकरण बिल्कुल साफ है, जो टीम आज जीतेगी उसके 4 अंक हो जाएंगे और वह ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर बांग्लादेश जीतता है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और यूएई 2 अंकों पर ही रह जाएगा। वहीं अगर यूएई जीतता है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और बांग्लादेश के खाते में 2 अंक ही रहेंगे। यानी दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। बांग्लादेश के लिए एक सकारात्मक पहलू उसका बेहतर नेट रन रेट है। फिलहाल उसका नेट रन रेट 1.677 यानी कि प्लस में है, जबकि यूएई का नेट रन रेट -0.854 है। हालांकि आज के मैच में इसकी भूमिका तभी पड़ेगी जब मुकाबला किसी और समीकरण की तरफ जाए। फिलहाल सीधी बात यह है कि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, इसलिए आज दुबई में मुकाबला सिर्फ बांग्लादेश और यूएई के बीच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की एक जगह के लिए होगा। अब देखना होगा कि बांग्लादेश अपनी बल्लेबाजी और ऑलराउंडर खेल के दम पर आगे बढ़ता है या यूएई इंडोनेशिया के खिलाफ मिली जीत के आत्मविश्वास को कायम रखते हुए इतिहास रचता है। दुबई के इस रोमांचक मुकाबले पर नजर रहेगी, क्योंकि आज की जीत सीधे सेमीफाइनल का दरवाजा खोलेगी।
1: और एक और बेहतरीन मुकाबला इस समय चल रहा है, वो है घरेलू क्रिकेट का मुकाबला, और वो चल रहा है दिलीप ट्रॉफी का मुकाबला, फाइनल मुकाबला है। और ये मुकाबला भी कई लोगों के लिए दरवाजे खोलेगा, भारतीय टीम के लिए, जो भी टेस्ट मैच के लिए जब टीम तैयार होती है तो दिलीप ट्रॉफी में किया गया प्रदर्शन बहुत काम आता है। और जिस तरह से अर्शद ईस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 708 रन का विशाल का स्कोर बनाया 10 विकेट के नुकसान पर, वो तो दिखाता यही है कि ईस्ट जोन के तो पूरे जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की तो उनका शुरू से ही लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था कि बड़ा स्कोर बनाओ पहली पारी में और उसके बाद मुकाबले को अपने हक में कर लो। और जिस तरह से मुकाबला अभी तक चल रहा है तो कहीं ना कहीं अर्शद ये तो कह सकते हैं कि शिकंजा जो है वो साउथ के ऊपर ईस्ट का और कड़ा होता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा।
1: और जिस तरह से शुरुआत हुई थी, सबसे पहले पारी की शुरुआत की थी अभिमन्यु ईश्वरन ने, उन्होंने 72 रन का योगदान अपनी टीम को दिया। वैभव सूर्यवंशी, जिनके लिए बहुत सारी बातें होती हैं, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 44 रन बनाए। हालांकि ताबड़तोड़ कहा जाएगा क्योंकि केवल 37 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बनाए। और दिलीप ट्रॉफी क्योंकि एक टेस्ट मैच टाइप का फॉर्मेट होता है, डेज क्रिकेट होता है, तो इसलिए इसमें तेजी से रन बनाए उन्होंने और कहीं ना कहीं अपने ओपोनेंट जो साउथ जोन की टीम है उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला दिया। और उसके बाद शिखर मोहन ने शानदार बल्लेबाजी की, 85 रन का योगदान टीम को दिया। सुदीप कुमार थोड़ा सा अनलकी रहे, जल्दी आउट हो गए क्योंकि बल्लेबाजी के लिए विकेट बहुत अच्छी है। और उसके बाद पारी आई ईशान किशन की, और अर्शद ईशान किशन की 270 रन की मैमथ पारी, 334 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 30 चौके और 7 छक्के भी लगाए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये दिलीप ट्रॉफी फाइनल में उनका पहला दोहरा शतक है।
1: और उसके साथ ईशान किशन के साथ कुमार कुशाग्र, दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, सेंचुरी बनाई, 101 रन बनाए कुमार कुशाग्र ने। वहीं अनुकूल रॉय ने 45, मोहम्मद कुनैन ने 40, मोहम्मद शमी ने भी अपने हाथ दिखाए बल्लेबाजी में और 28 रन का योगदान टीम के लिए दिया। अभिषेक अपना खाता नहीं खोल सके और नाबाद रहे। वहीं मुकेश कुमार 0 के स्कोर पर आउट हुए। तो कुल मिलाकर 708 रन बनाए ईस्ट जोन की टीम ने, और उसके बाद इस बड़े टोटल का पीछा करने उतरी साउथ जोन की टीम। पहली पारी में साउथ जोन की टीम अभी तक जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक साउथ जोन की टीम के 242 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। रिक्की बुई केवल 1 रन बना सके, नारायण ने 32, देवदत्त पाटिकल ने कुछ अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, 62 रन बनाए, शाइक रशीद ने 27, तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे हैं 56 के स्कोर पर, कप्तान भी हैं टीम के। सांबरान रविचंद्रन ने 23 रन, श्रेय गोपाल ने 26 और अभी सीवी मिलंद बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 रन के निजी स्कोर पर। तो कुल मिलाकर 242 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और टोटल का जो पीछा किया जा रहा है वो तो बहुत ही बड़ा है। अभी साउथ जोन की टीम 466 रन पीछे है ईस्ट जोन के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं अरशद, शिकंजा तो ईस्ट जोन का बहुत मजबूती से कसा जा चुका है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो ईशान किशन ने 270 रन बनाए हैं, अभी देखिए ना सिर्फ 242 पर ही पहुंची है पूरी टीम, 6 प्लेयर आउट हो गए उनके।
1: और ये बताता है कि अब ईस्ट जोन चैंपियन बनने वाली है दिलीप ट्रॉफी, क्योंकि इतने बड़े टोटल का जब आप पीछा करते हैं और 6 विकेट आपके गिर चुके हैं तो पहली पारी के आधार पर तो आप कम से कम उनसे पीछे ही रहेंगे। दूसरी पारी में भी यदि आप रन बना भी लेते हैं, क्योंकि 3 दिन का खेल तो पूरा हो चुका है, तो अब इतना समय भी नहीं है कि आप उनको आउट कर दें। मतलब अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं निश्चित हो चुकी होती हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है कि ईस्ट जोन चैंपियन बन सकते हैं दिलीप ट्रॉफी की।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: और वहीं चैंपियंस ने अपनी जो राह है वो पकड़ ली है। ज़ेवरेव ने अपना मुकाबला जीत लिया है US ओपन 2026 में। अब राउंड ऑफ 16 के मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और ज़ेवरेव ने अपना मुकाबला एल डरेडरी, जो इटली के खिलाड़ी हैं, उनसे मुकाबला जीत लिया है। ज़ेवरेव को शाशा भी कहा जाता है, उनका निकनेम है। 6-2, 6-2 और 7-6 से उन्होंने ये मुकाबला जीता। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने ये मुकाबला खेला है तो ये तो दर्शाता है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है और आने वाले समय में जो उनके बाकी मुकाबले होंगे उसमें भी वो शानदार खेल खेलेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में भी अब क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जो हैं वो पूरी तरह से डिसाइड हो चुके हैं। और अब जो मुकाबला कल खेला गया था राउंड ऑफ 16 का, वो पहले हम आपको पुरुषों के क्वार्टर फाइनल भी बता देते हैं, क्योंकि पुरुषों की बात चल रही थी तो पुरुषों के क्वार्टर फाइनल भी हम बता देते हैं कि अब वो मुकाबले जिस तरह से खेले जाने, तो उसमें अब ज़ेवरेव तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच ही गए हैं, साथ ही ए गिरा भी अपने जिस तरह से उन्होंने मुकाबला खेला तो उसमें 6-3 से वो आगे थे, फिर 7-6 से उन्होंने अगला सेट जीता, उसके बाद 6-7 से वो अपना सेट हार गए। वेंडे जेंडिक्स से उनका मुकाबला था, उसके बाद 6-7 से फिर वो अपना सेट हार गए। तो कुल मिलाकर 4 सेटों में 2-2 की बराबरी पर दोनों थे और उसके बाद 4-6 से वो मैच भी हार गए। इसके अलावा कंचनोव के कंचनोव और एल टियान के बीच में जो मुकाबला था उसमें 7-5, 4-6, 6-7 और 6-1, 6-4 से के कंचनोव ये मुकाबला जीत गए। और अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। महिलाओं के सिंगल्स मुकाबले में अब जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें गॉफ ने मुकाबला अपना जीत लिया है और राउंड ऑफ 16 का ये मुकाबला उनका हो गया है। 6-1, 6-4 से उन्होंने अपना ये मुकाबला जीत लिया। सबलिंका आज अपना मुकाबला खेलेंगी नोस्कोवा के सामने। और ओसाका का जो मुकाबला था वो रिया बेंकिना से के साथ था, उन्होंने ये मुकाबला 6-1 और 6-4 से जीत लिया। तो कुल मिलाकर कई सारे अच्छे मुकाबले US ओपन में हो रहे हैं और जिस तरह के खिलाड़ी हैं उस तरह के खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस उसी तरह से दी है और आने वाले समय में कुछ अच्छे मुकाबले देखने को अवश्य मिलेंगे। और ये तो बिल्कुल अपने दर्शाता है कि जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: और अब US ओपन की बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम और बात कर लेते हैं जूनियर एशिया कप हॉकी की, जहां पर भारत और दक्षिण कोरिया की टीमें आमने सामने हैं और वहीं महिलाओं में भारत और जापान की टीमें। तो क्या क्या हुआ इस जूनियर एशिया कप में, बता रहे हैं अर्शद।

चीन के मौकी में खेले जा रहे एचएफ जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 7-3 से हरा दिया। जी हां, इस जीत के साथ भारत के 3 मैचों में 7 अंकों

गए हैं। भारत ने अब तक 2 मैच जीते जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। इस जीत के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल के काफी करीब पहुंच गई है। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारत ने 5वें मिनट में कप्तान अनमोल अक्का की पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल से बढ़त बनाई, लेकिन अगले ही मिनट दक्षिण कोरिया ने गोल कर एक स्कोर 1-1 बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर में लवनूर सिंह ने फील्ड गोल करके भारत को फिर आगे किया। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर बराबरी कर ली। इसके बाद अजीत यादव ने 20वें मिनट में गोल कर भारत को हाफ टाइम में 3-2 से बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में दक्षिण कोरिया ने फिर गोल करके 3-3 स्कोर बराबर कर दिया। यानी मैच के करीब 3 क्वार्टर तक दोनों टीमें बराबरी की टक्कर देती रही, लेकिन आखिरी क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया। प्रभदीप सिंह ने 42वें मिनट में गोल कर भारत को 4-3 से आगे कर दिया। इसके बाद भारत ने सिर्फ 3 मिनट के अंदर 3 गोल करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। गुरसेवक सिंह ने 55वें मिनट में गोल किया।

0: हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जब हम बात करते हैं दांतों की, हर कोई ये चाहता है कि हमारे दांत बिल्कुल सफेद हो, एक ही पंक्ति में आए, तो डॉक्टर साहब जब दांत निकलने से पहले क्या हमें कोई सावधानी बरतनी चाहिए?
1: अगर हम ये सावधानियाँ शुरू से, जब बच्चे के दांत अभी बल्कि निकले भी नहीं हैं, तभी से हम स्टार्ट करें और धीरे धीरे बच्चे को भी उसकी आदत डालें जैसे जैसे वो बड़ा हो, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि दांत अभी निकले भी नहीं, जिसको हम दूध पीता बच्चा कहते हैं कि अभी दांत नहीं है, पर बच्चे खाते भी हैं, चाहे वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप होता है, दूध भी पिलाया जाता है, तो उस समय भी दांत निकलने से पहले बच्चों की मसूड़ों की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है कि रात को सोते सोते बॉटल से दूध पिला दिया और बच्चे को ऐसे ही सुला दिया। सो मैं उसमें सजेस्ट करूँगी, अभी बच्चा छोटा है तो उसकी माता को उसके मसूड़ों को साफ करना चाहिए। तो एक नरम साफ मलमल का कपड़ा जैसे होता है, तो उसे उंगली पे लपेट के खासकर रात को सोने से पहले साफ करें, जिससे मुंह में दूध के कण ना रहे या बचा हुआ दूध ना रहे, नहीं तो वो तरह तरह के इन्फेक्शन कर सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बात की है मसूड़ों की, कहते हैं ना कि अगर हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं तो उसमें जो दांत होंगे वो भी काफी समय तक काम करते हैं, तो क्या ये बात सही है?
1: ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज जो मसूड़े हैं वो एक तरह से दांतों को पकड़ के रखते हैं। सो अगर मसूड़े की बीमारी होना शुरू हो जाए, वो धीरे धीरे अगर उसे सही समय पे उसका समाधान ना किया जाए तो वो हड्डी तक जाती है, जिसको हम पायरिया पेरोडोंटाइटिस बोलते हैं, और धीरे धीरे अगर हड्डी घिसने लगे तो दांतों के ऊपर उसकी पकड़ ढीली होके दांत हिलना शुरू हो सकते हैं।
0: जी धीरे धीरे जब बच्चे के दांत निकलने आरंभ हुए और एक दांत निकला या दो दांत निकले, तो बच्चे तो वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं, तो उस समय एक या दो दांत है तो क्या वहीं से हमें देखभाल आरंभ करनी होगी?
1: बिल्कुल, बिकॉज जैसे हमने कहा भी बच्चा अपना खुद ध्यान नहीं रख सकता, उसे ब्रश करना नहीं आता। आमतौर पे जो दांत निकलने की उम्र होती है बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबीज में, 6 से 7 महीने के आसपास पहला दांत निकलना शुरू होता है। सो उससे पहले एक चीज और बताऊंगी, जब दांत निकलते हैं तो मसूड़ों में खारिश जैसा होता है, तो वो हर चीज कहीं से भी कुछ भी उठा के मुंह के अंदर डालते हैं, और वो एक बहुत कॉमन कारण होता है जिसके कारण बच्चे को तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि गंदे हाथ या चीजें उठा के कुछ भी मुंह में डाली, तो उस समय पे दांत इरप्ट मसूड़े से हो रहा होता है, वो इरिटेशन कॉज करता है। सो बहुत तरह के टीथर्स आते हैं जो बच्चे को दिया जाता है, उसका ध्यान ये रखना है कि उसे साफ रखना है। ठंडी कोई चीज है, जैसे टीथर को भी अगर हम मान लीजिए फ्रिज में डाल के थोड़ा सा वो ठंडा होगा, वो बच्चे को दे चबाने के लिए, वो उसके ऊपर चबाए, तो वो यहाँ वहां से गंदी चीजें उठा के मुंह में नहीं डालेगा, तो इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगा और बच्चे की जो इरिटेशन इचिंग उस समय होती है गम्स में, उसको भी थोड़ा रिलीव करेगा। और जैसे आपने कहा कि मान लीजिए दो दांत अभी आए हैं, तो जैसे ही दांत मुंह में आए तो थोड़ा थोड़ा ब्रशिंग की जरूरत पड़ने लगती है। तो पहले जैसे मैंने कहा कि कपड़े से मसूड़े की सफाई, ऐसे अब जो ये दांत है, छोटी छोटी ब्रश आती है बच्चों के लिए जो उंगली के ऊपर भी लगाई जा सकती है, उसमें कैप होती है जो उंगली पे फिक्स हो जाती है, और तो वो बच्चे की माँ उससे साफ करना शुरू करे अभी शुरू में, बिना पेस्ट के मैं कहूंगी कि साफ करना शुरू करें जब एक दो दांत आए हैं, क्योंकि बच्चा स्वेलो कर लेगा, उसे थूकना नहीं आता है
0: जी।
1: तो दांत को साफ रखना भी जरूरी है, तो कुछ भी खाने के बाद एक घूंट पानी का पिला दे, मसूड़े को साफ करें रात को सोने से पहले, और दांत पे ब्रश करें
0: जी। जब पूरे दांत आ गए हैं बच्चे के, उसके बाद में कुछ बच्चे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कुछ माता पिता भी बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे जो है ब्रश करने से कतराते हैं या डरते हैं कि हमें ये टूथपेस्ट है इसका स्वाद अच्छा नहीं है, माँ बाप बदल भी देते हैं, उसके बाद भी उनको समझ भी नहीं आता, फिर माँ कहते हैं बच्चा इतना रो रहा छोड़ो, तो ये जो आदत है ये उनके दांतों को कहाँ तक खराब करेगी?
1: बिल्कुल उनके दांतों को खराब करेगी। तो ब्रश कराना, बिकॉज बच्चों को बहलाना मैं कहूँ कि उन्हें हमें एक अगर शुरू से

0: जो आदत डाल दी जाए वो आदत पड़ जाती है। तो उन्हें उसकी धीरे धीरे जब बच्चा समझने लायक उम्र में आ गया है तो उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए। और अगर जैसे मैंने कहा कि हम शुरू से अगर माता बच्चे को हेल्प कर रहे हैं सफाई करने में, धीरे धीरे आप उसके हाथ में ब्रश पकड़ाना शुरू कीजिए और वो उससे साफ करना शुरू करे। अब तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास बच्चों को बहलाने के या एजुकेशन के। आप उन्हें वीडियोज दिखा सकते हैं, बहुत सारे कार्टून्स उसके ऊपर बने होते हैं कि देखिए इसने दांत नहीं साफ किया तो आपके दांत खरगोश जैसे हो गए और ऐसे। सो मे बी दे आर डिफरेंट वेज जिससे आप बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस समझाएं और उसको आदत डालें। और जैसे आपने पेस्ट की बात करी तो बहुत सारे बच्चों के लिए स्पेसिफिक पेस्ट मार्केट में अवेलेबल है जिनका टेस्ट अच्छा होता है
1: जी।
0: तो बच्चा उससे फिर डरेगा नहीं, तो आप बच्चे को वो पेस्ट दे सकते हैं
1: जी।
0: देन एक और चीज जो कई बच्चों में हमने देखा हेल्प करती है, जैसे बच्चे को कोई भी नई चीज देखो ना टेक्नोलॉजी वो अट्रैक्ट करती है, तो कुछ पावर ब्रशेज आते
1: जी
0: हैं।
1: जी।
0: अगर मान लीजिए कोई बच्चा कतरा रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा, सो
1: या
0: डर लग रहा है, तो उसको खेल की तरह से भी आप उसे एक बार दे सकते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि उसको छोड़ा ना जाए कि चलो रो रहा है तो छोड़ दे। आप उसे जैसे भी बहलाएं, जैसे भी तैयार करें, बट उसमें ब्रशिंग की हैबिट डालना है।
1: और ब्रशिंग की जो हैबिट है वो दिन में कितने बार बच्चे को ब्रश करना चाहिए?
0: कम से कम 2 बार ब्रश करना हम रेकमेंड करते हैं। और खासकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रात में सोने से पहले, क्योंकि कुछ भी खाया पिया दूध पिया उसके बाद अगर उसके कण मुंह में रहेंगे तो वो अलग अलग तरह की बीमारियां करते हैं, मसूड़ों की बीमारी भी, मुंह से स्मेल आना और दांतों में कीड़ा लगना
1: जी।
0: तो इसलिए 2 बार ब्रश रेकमेंडेड है, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह के टाइम में।
1: और जब बच्चों के दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं या दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आता है तब भी माँ बाप परेशान होते हैं, फिर ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास अब इनको क्या लेकर जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे मालूम नहीं वो क्या बताएंगे, क्या बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऐसे में आप हमारे जो श्रोता है उनको क्या सलाह देंगे?
0: देखिए जब दांतों में आपको किसी भी तरह की परेशानी बच्चे के दांत में नजर आ रही है कि वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं या एक के ऊपर एक आ रहा है
1: जी,
0: तो मैं सलाह दूंगी कि जरूर से डेंटिस्ट के पास जाके दिखाएं। सो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें पीडोडोंटिस्ट बोला जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे मैंने अभी बहलाने की बात की, ऐसे ही हमारे पास बहुत से टेक्निक्स हैं कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाए प्यार से समझा के, कभी भी डराने का कि अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें इंजेक्शन लगवा देंगे या हम तुम्हें डॉक्टर के पास जाएंगे,
1: डराते तो
0: ये एग्जाम्पल कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे के दिमाग में डर हम ही लोग बिठाते हैं। सो जैसे आपने पहली चीज टेढ़े मेढ़े दांत की बात की, जैसे हम सबको पता है कि 2 दांत होते हैं, पहले दूध का दांत होता है वो टूटता है तो पक्का दांत आता है। अगर जब दांत इरप्ट होने शुरू होते हैं, दूध का दांत टूटता है और पक्का आता है, तो कई बार वो दिखते हैं कि टेढ़े आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, बीच में गैप है सेंटर वाले दांतों में, तो इस समय पे अभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि दांत अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जब उसके आसपास वाले दांत आएंगे तो उसके प्रेशर से भी कई बार चेंज होता है। पर जो एक के ऊपर एक वाली आपने बात की वो हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूध का दांत तो टूटा नहीं और पक्का दांत उसके आगे या पीछे से आना शुरू हो गया। ऐसी सिचुएशन में कई बार उस दूध के दांत को निकलवा देना ठीक रहता है और जिससे कि वो पक्का दांत अपनी सही जगह पे आ सके। तो मैं एक सलाह दूंगी हर माँ बाप को कि अगर आपको बच्चे के मुंह में दिखे कि एक दांत पहले से प्रेजेंट है और दूसरा दांत उसके आगे पीछे या ऊपर से आना शुरू हो गया, तो उस समय एक बार ले जाके डेंटिस्ट को जरूर से चेक करा दी।
1: जब हम बात बच्चों की कर रहे हैं, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते चले गए, और एक बात और कि जब हम बात करते हैं कि अक्ल की दाढ़ आ रही है उसमें भी काफी परेशानी होती है, काफी दर्द होता है, और फिर सब मजाक भी कहते भी अब जो है वो तुम्हें अकल आनी शुरू हो जाएगी, तो वो जो बात हम करते हैं वो कहां तक सही है?
0: अकल की झाड़ू से इसलिए ऐसा नहीं है कि वो दांत आएगा तो अकल आएगी
1: जी,
0: या जिसको दांत नहीं आया हो वाला तो अकल नहीं आएगी
1: जी।
0: इसको हम विजडम टूथ या थर्ड मोलर है, ये तीसरा जो जबड़ा बड़ा वाला उसको अकल झाड़ बोलते हैं। सो ये आती है 16 साल के बाद इरप्ट होना शुरू होता है। सो प्रोबेबली वो एक एज है जब हम थोड़ा सा मान के चलते हैं कि बच्चे को समझ आ रही है, तो शायद इसलिए उसका नाम अकल झाड़ दिया गया है। ये कई बार कुछ लोगों में नहीं इरप्ट होती, टेढ़ी होती है। जैसे अगर मान लीजिए जबड़े का साइज छोटा है तो वो दांत कई बार बहुत कॉमन होता है विजडम टूथ के साथ कि टेढ़ा आया या आया ही नहीं, तो उसको चेक कराना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए आ रहा है और टेढ़ा आ रहा है तो कई बार वो आगे वाले दांत के ऊपर प्रेशर डाल के उसे खराब करता है या वहां जगह बन जाती है, खाना फंसने लगता है। तो अगर सीधा आ गया है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं किया तो, और अगर टेढ़ा आ रहा है तो फिर अगेन डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी
1: जी। देखिए अभी हम बात कर रहे थे बच्चों को बहलाने की, अब बच्चों को जब बहलाते हैं तो उनको तो देखिए या तो हम जंक फूड देते हैं या मीठी चीजों में कुछ देते हैं, और उसके बाद हमें ये भी पता है कि ज्यादा मीठा खाने से बच्चों के दांत जो

0: खराब भी होते हैं, दोनों चीजें हम करते हैं, हमें मालूम है सही भी है गलत भी है, तो आप क्या सलाह देंगी हमें?
1: देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बच्चे को हमें खाने से रोकना चाहिए, बट जंक फूड वाला जो एक ट्रेंड आजकल चल रहा है आजकल की जनरेशन में, और हम लोग भी देते हैं बच्चों को, सो ठीक है कभी कभी उसने कुछ मीठा खाया या कुछ जंक फूड बोलते हैं, बट हमें उसके साथ में आदत डालनी है कि हेल्दी फूड भी खाए, जैसे कि सलाद, फल, रेशे वाली चीजें, जो कि सेल्फ क्लिंजिंग एक्शन जिनका होता है कि वो दांतों को खुद से रेशे के कारण साफ करते हैं, तो एक बैलेंस डाइट देना, टेस्ट ले बच्चा अलग अलग चीजों से, बट उसके साथ में हमें ध्यान रखना है प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर बैलेंस डाइट उसको मिलना चाहिए, और शुगरी चीजें होती है या जंक फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड, उसको जितना हम कम कर सके उतना अच्छा है, बिकॉज ये खाने के कारण दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ते हैं, और खासकर अगर वो खाने के बाद सफाई नहीं रखी गई।
0: क्या क्या हम अपने खाने में शामिल करें जिससे कि हमारे दांत मजबूत रहें?
1: सलाद, फल, जब बच्चे अभी छोटे हैं दांत उनमें बन रहे हैं तो कैल्शियम के सोर्सेस वो बच्चे को जरूर देने चाहिए, और एक बैलेंस डाइट जो कि विटामिन, मिनरल सब कुछ उसमें हो, बिकॉज किसी भी तरह की जो डेफिशिएंसी है वो मुंह के अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट कर सकती है, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो मसूड़े की बीमारियां हो जाती है, सो इसलिए एक बैलेंस डाइट और जिसमें रशे वाली चीजें या कच्ची चीजें भी उसमें शामिल की जाएं।
0: तो आप हमारे जो श्रोता है उनको क्या बताना चाहेंगे कि जो बच्चों में दांतों की देखभाल है उसकी सही आदतें कौन कौन सी हैं?
1: उसकी सही आदतें, एक तो सबसे पहली चीज बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, उसके अलावा दांतों की सफाई रखना ठीक से, दांतों को उसी चीज के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए करना चाहिए, जैसे कई बार बच्चों को आदत होती है ढक्कन खोला उससे या कुछ तोड़ा या काटा है, ऐसी वाली चीजें ना करें, रेगुलरली अपने मुंह को क्लीन रखें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, प्रॉपर पेस्ट का यूज के साथ में, और अपना खान पान ठीक
0: है। अगर आपसे चेकअप की बात करें तो बच्चों को कितनी बार जो है वो आप पास लाकर बच्चों के दांत चेक करवाने चाहिए?
1: देखिए, बच्चे को या बड़े दोनों के लिए ये बात वैलिड है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 6 महीने में एक बार लाना काफी है। बच्चे में अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा कि किसी के दांत में कीड़ा लग गया, दांत टेढ़े मेढ़े है, तो हो सकता है जल्दी भी लाना पड़े, बट अदरवाइज ऑन एन एवरेज 6 महीने से 1 साल के बीच में एक विजिट होना जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये आप बातचीत सुन रहे थे बच्चों में किस तरीके से दांतों की देखभाल की सही आदतें डाली जाए, और विशेषज्ञ थी डॉक्टर रेखा गुप्ता, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज।
3: जी, और इस बातचीत के बाद हम सेहत से जुड़ी और एक कुछ और बातचीत कर लेते हैं। राजेश भाई, कहते हैं ना कि ये जो मौसम है सितंबर का महीना अपने साथ बदलता मौसम लेकर आता है, कहीं बारिश, कहीं उमस और कहीं अचानक गर्मी। मौसम में ये बदलाव हमारी जो सेहत है ना उस पर भी असर डालता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि बारिश के मौसम में पानी और नमी के कारण गंदगी, मच्छर और कई तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और इसीलिए इन दिनों विशेष साफ सफाई की जरूरत होती है।
3: जी, और बात
2: मतलब इस दौरान आप कुछ ऐसी चीजें करना जरूरी है, अगर आपको गंदगी से, बीमारियों से बचाना है, अपने घर नहीं लाना है तो जैसे घर और आसपास पानी को जमा ना होने दें, अगर टायर है या फिर कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसमें पानी जमा है तो उसको पलट दें, इसके अलावा गंदे और रुके हुए पानी को तुरंत हटा दें, पीने के पानी को ढककर और साफ रखें, हम भोजन हमेशा ढककर रखें, और कोशिश करें कि जब खाना खाएं गर्म खाना खाएं, बासी खाना खाने से हमेशा परहेज करें, और खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं।
3: बहुत आपने सही कहा, क्योंकि ये जो सितंबर का महीना राजेश भाई, मानसून के जाने और हल्की ठंड की शुरुआत का समय होता है, और इस दौरान जो गांव में खेती बाड़ी का काम जो है तेज़ी से होता है, लेकिन जैसा कि देखा जाता है कि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, फंगल इन्फेक्शन और सर्दी खांसी जैसी जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो आपने सावधानी बताई इन सारी बीमारियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन
2: कुछ और इसमें चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा बिल्कुल कि घर के आसपास कूड़ा कचरा जमा ना होने दें इस मौसम में, खास तौर से नालियों की नियमित सफाई करें ताकि पानी आसानी से निकल सके, गीले कपड़ों और जूतों को अच्छी तरह सुखा लें, मच्छरों से बचाव के लिए घर में मच्छरदानी या अन्य सुरक्षित उपायों का जरूर इस्तेमाल करें, बच्चों को कीचड़ और गंदे पानी में खेलने से रोकें, इसके अलावा फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल करें, बारिश के पानी में घर में सीलन और फफूंद हो तो उसकी सफाई करें। मतलब कहने का यह है कि बारिश का मौसम खुशियों का हो

0: लेकिन बीमारियों का नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि साफ सफाई रखें और स्वस्थ
1: और
0: रहें।
1: कुछ खास बातों का भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मच्छर इस वक्त बहुत तेजी से पनप रहे हैं, ऐसे में नीम का धुआं शाम के समय, आप हर किसी के घर के आसपास नीम का तो पेड़ होता ही है, तो आप अपने घर और पशुओं का भी हमें इस मौसम में ध्यान रखना बहुत
0: बिल्कुल।
1: ज़रूरी है।
0: और अब घड़ी कह रही है कि कार्यक्रम यहीं पर करने संपन्न करने का समय हो गया है, तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: भूमिका है, इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक बहुमत में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, हम सब बेहद भाग्यशाली हैं जो भारत जैसे देश में रहते हैं। यहाँ की ऋतुएं, धरती, मौसम, संस्कृति अनेक रंगों में रंगी हुई है। हर मौसम के अनुसार हम सबको फल, फूल, शाक सब्जियां, अन्न प्राप्त होते हैं। धरती हमारी माता है तो किसान भाई बहन अन्नदाता हैं।
4: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। किसान वाणी कार्यक्रम में हम अपने अन्नदाताओं यानी कि किसान भाई बहनों के लिए नित नई जानकारी लेकर आते हैं ताकि उनका उत्पादन भी अच्छा हो, आमदनी भी दुगनी हो।
3: और रजनीश, जैसा कि तुमने कहा, आमदनी भी दुगनी हो, इसीलिए आज हम नकदी फसल कपास में समेकित कीट प्रबंधन पर अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पर।
4: और इसके साथ ही हम बताएंगे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव, कृषि सलाह देंगे और मौसम की जानकारी, और साथ में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पर।
3: रजनीश, जैसा कि ये नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, ये भारत सरकार का एक ऐसा अभियान है जिसमें किसान भाई बहनों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना तथा बाजार में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से उनकी आय की रक्षा करना है।
4: जी, और प्रतिमा, इस अभियान की शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी और इसमें मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS और मूल्य घाटा भुगतान योजना यानी कि PDPS और निजी खरीद जैसे तंत्र भी शामिल हैं।
3: बिल्कुल, और हमारे किसान भाई बहनों को खासकर दलहन, तिलहन और अन्य अधिसूचित कृषि उपज किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत किसानों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच आने वाली परिस्थितियों में राहत देने के लिए विभिन्न मूल्य समर्थन और मूल्य स्थिरीकरण उपायों का सहारा दिया जाता है।
4: और प्रतिमा, हम अपने किसान भाई बहनों को यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि किसी भी सरकारी खरीद या योजना का लाभ लेने के लिए अपनी फसल पंजीकरण, बैंक खाते और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी समय पर अपडेट करते रहें।
3: बहुत महत्वपूर्ण बात कही रजनीश तुमने। तो किसान भाई

0: याद रखें कि यदि आय सुरक्षित होगी तभी खेती मजबूत होगी और देश की खाद्य एवं कृषि व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो ये अभियान बहुत ही जरूरी है हमारे किसान भाई बहनों के लिए
1: जी
0: रजनीश, तो हमारे किसान भाई बहन इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए कि जब हमें सही जानकारी होती है तभी हम उसका सही लाभ ले पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM दिल्ली में।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब, कपास फसल की जब भी बात होती है तो इसे महत्वपूर्ण कहा जाता है, ये किसान भाइयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: जैसा कि आपने अभी शुरुआत में बताया, ये नकदी फसल है, यानी किसान को स्वयं तो प्रयोग नहीं करता लेकिन इसको सीधा बाजार में बेच के सीधा सीधा कैश प्राप्त करता है, इसलिए इसको नकदी फसल कहा जाता है। और विशेष रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं होती, तो वहाँ भी इसको अच्छे से उगाया जा सकता है। और खरीफ सीजन में धान के अलावा बात करें तो कपास से अच्छा उत्पादन मिल जाता है और एक एश्योर्ड रहती है फसल की, भाई इसमें हमें कुछ ना कुछ इनकम होगी। तो आय के संरक्षण की जैसे बात अगर करेंगे तो कपास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: ये तो थी हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें भी कपास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो अर्थव्यवस्था में कैसे ये अपना सहयोग करती है?
2: वस्त्र तो सब लोग पहनते हैं।
0: जी बिल्कुल,
2: तो वस्त्र उद्योग कपास पे निर्भर है और हमारे यहाँ से कपास बहुत से देशों को निर्यात भी किया जाता है। तो जब निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो हम आर्थिकी मजबूत होती है। तो आर्थिकी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा, किसान भी मजबूत होगा।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाइयों के लिए, अपनी आय भी बढ़ानी है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, तो कपास की फसल लगाते वक्त किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: बीज का चयन महत्वपूर्ण है। बीज जो है रेस्टेंट वेराइटी, जो भी प्रतिरोधी प्रजाति है, विशेष रूप से बीटी प्रजातियां लगाते हैं, बीटी हाइब्रिड, जो कि कीटों के प्रति विशेष रूप से बॉल वर्म के प्रति प्रतिरोधी होती है, और जो वायरस के प्रति भी जो रेजिस्टेंट वेराइटी है उनका ही चयन करना है। दूसरी बात होती है कि समय से बुवाई, खासकर उत्तर क्षेत्र में अगर 15 मई के बाद बुवाई करते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं, खासकर सफेद मक्खी की, जिसकी वजह से बहुत हानि उठानी पड़ती है किसानों को।
0: तो डॉक्टर साहब, इस समय जो कपास की स्थिति है खेतों में किस तरीके की है?
2: जो इस समय कपास में बॉल बन रहे हैं, फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन स्टेज है, यानी कि पुष्पन अवस्था है और टिंडे बनने की अवस्था में है। तो इस समय बहुत सारी बातें हैं जो किसान को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय बहुत से कीट हैं जिनका आक्रमण होता है, उनके कीट के प्रबंधन की आवश्यकता है। तो इस पे किसानों को चाहिए कि अभी खेतों की लगातार निगरानी की आवश्यकता है और IPM को अपनाने की आवश्यकता है, समेत कीटनाशी जीव प्रबंधन को।
0: तो डॉक्टर साहब, कपास फसल में कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं IPM, ये क्या है?
2: IPM जिसको हिंदी में कहते हैं समेकित नासी जीव प्रबंधन, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो जहाँ बात नासी जीव की बात आती है, नासी जीव जो नाश करे, इसमें कीट भी होते हैं, इसमें फंगस भी होती है, इसमें वायरस भी होते हैं, इसमें जीवाणु भी होते हैं, इसमें नेमाटोड भी होते हैं, इसमें खरपतवार भी होते हैं, इन सबका प्रबंधन ये नासी जीव प्रबंधन होता है। कैसे करना होता है? इंटीग्रेटेड तरीके से, मतलब समेकित तरीका। ये क्या होता है कि इसमें एक चीज से कंट्रोल नहीं होता किसी भी नासी जीव का, तो यानी इसमें हमें संगठित होके नासी जीव का प्रबंधन है। संगठित किस चीज का करना है? सभी तकनीकों का, जैसे रेजिस्टेंट वैरायटी भी लेनी है और बहुत सारी सस्य विधियां हैं कि भाई दूरी सही हो, लाइन से लाइन की दूरी, अगर फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं खाद उसका संतुलित प्रयोग होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना है और बहुत से मित्र कीटों का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अंत में जब कोई आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर कोई कीट पहुंच रहा है तब जाके हमें सुरक्षित रसायनों का प्रयोग करना, ये सबको मिला के जब करते हैं तब ये IPM होता है। और साथ में हमें इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, यानी कि सब लोग मिलके करते हैं, जब तकनीकों को संगठित करना है, किसान का वैज्ञानिकों के साथ भी संगठन होना जरूरी है, जब सब मिलके एक साथ जब वार करते हैं किसी दुश्मन पर तब दुश्मन सही से नियंत्रित होता है।
0: तो डॉक्टर साहब, कपास में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी पहचान किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं?
2: जी, तो वर्तमान को अगर ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो कपास में उत्तर भारत में सफेद मक्खी जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, एक तेला लगता है हरा तेला जिसे जैसेट बोलते हैं, इसको देखेंगे किसान तो ये तिरछा चलता है, और थ्रिप्स जिसे जू भी बोलते हैं पंजाब में, ये एक बड़ी समस्या होता है। और इन सबसे ऊपर एक बड़ी समस्या है पिंक बॉल वर्म, गुलाबी सुंडी। ये बॉल वर्म, बॉल का मतलब टिंडा, वर्म का मतलब सुंडी।
0: एक माहू भी होता है डॉक्टर साहब।
2: माहू है ये, खासकर महाराष्ट्र का क्षेत्र है इसमें ज्यादा होता है,
0: इसमें ज्यादा
2: यहाँ पे आता है, लेकिन अक्टूबर के लास्ट में आएगा, उतना नुकसान यहाँ पे माहू से नहीं होता है। इसमें संख्या की बात करें तो सैकड़ों में कीट होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कीट की अगर बात करें जिसका किसानों को विशेष रूप से ध्यान देना, तो इसमें पिंक बॉल वर्म, सफेद मक्खी और हरा तेला। सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो वहां पे जाके माऊ को भी ध्यान देना, माऊ का वहां पे अटैक शुरू

बड़ा शुरुआत में होता है जुलाई के महीने में और यहाँ पे अक्टूबर में जाके होता है। तो पिंक बॉलबम को विशेष रूप से ध्यान देना है। ये पतंगा होता है छोटा सा, जैसे चावल का पतंगा होता है मेरे घर में, उसी तरह से छोटा सा पतंगा होता है। पेक्टिनोफोरा गोसिपेला इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये कीट इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, किसान इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे, क्योंकि शुरुआत में जब बीटी कपास आया भारतवर्ष में, तो बीटी कपास जो है इन कीटों के प्रति मतलब ऐसा था कि उसमें ये कीट नहीं लगते थे, लगते थे वो मर जाते थे। उसके अंदर एक बीटी जीन होता है, बीटी बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थ्रोइंजियसिस। उस बैक्टीरिया का जीन इस कपास में डाला गया तो कपास टॉक्सिन प्रोटीन बनाने लगा, जिसको और ये कीड़े खाएंगे तो मर जाएंगे। तो दो कीड़े हैं, जैसे एक आता है इसमें अमेरिकन बॉलबम, एक होता है स्पाइनी बॉलबम, वो तो अभी भी कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा पिंक बॉलबम, क्योंकि इसने उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर ली। मतलब कीड़े ने अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा कर ली कि वो सहन कर सकता है।

0: लगाई है और लगभग 40-45 दिन बाद जैसे उसमें पुष्पन अवस्था थे, फूल निकलना शुरू होते हैं, उस अवस्था में हमें फिरोमोन ट्रैप लगाने की आवश्यकता। फिरोमोन ट्रैप को गंधपाश भी बोलते हैं। इसमें मादा की सुगंध आती है, नर पतंगे इसमें फंस जाते हैं, उसमें एक ल्योर लगाया जाता है, गॉसिप ल्योर, तो उसमें पतंगे फंसते हैं, पता चल जाता है कि कीट आ गया है। दूसरा तरीका है, जब हमें पता चले कि इसमें कीट आ गया है तो हम उसकी फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी सबसे पहले काम होता है मुखबिरी, है ना, किसी दुश्मन के, तो ये डिटेक्शन है एक प्रकार से, पता चलेगा ये कीट आ गया, कीट आया तब उसके बाद हम खेत में नीम का स्प्रे कर सकते हैं, कुछ पतंगे आने लगे, में दो पतंगे चार पतंगे एक ट्रैप में आने लगे। एक एकड़ में अगर हम एक ट्रैप भी लगाते हैं, एक हेक्टेयर में दो ट्रैप भी लगाते हैं तो भी हमारा काम चलता है। अगर पतंगे बहुत ज्यादा आ रहे हैं तब इसका एक आर्थिक क्षति इस तरह होता है, तब हमें फिर कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। उससे पहले क्या है, अगर फूल की अवस्था है, मान लो किसी के पास फेरोमोन ट्रैप ही नहीं, वो क्या करेगा, तो खेत में जाके फूल देखेगा इसका, नॉर्मल फूल खिला हुआ होता है, अगर सूड़ी इसमें होगी तो सूड़ी चारों तरफ से उसकी पंखुड़ी को बांध देगी, सिल देगी आपस में, तो एकदम गुलाब का फूल जैसा बंद जैसा दिखेगा, तो ऐसा अगर फूल दिख रहा है समझ लो इसके अंदर सूड़ी है, तो उस फूल को लेकर आप नष्ट शुरुआत में कर सकते हैं। अगर किसी के पास फेरोमोन ट्रैप नहीं तो वो कैसे डिसीजन लेके कब इसको दवाई डालनी है, उसके लिए अगर 10% आक्रमण है, 10% फूलों में या 10% टिंडे में, टिंडे में भी पता नहीं चलता है कीड़े, बाहर से डंडा एकदम हरा दिखाई देगा, जब बॉल खुलती है, जब बाहर रुई निकल के आती है ना, जब उस समय देखेंगे तो रुई खराब है, कुछ दाने खा लिए इसने, मतलब जो है उसका कलर भी सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे, जिसकी वजह से कम रुई पैदा होगी, वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। अब अंदर घुस गया उसके बाद तो कुछ काम नहीं करता जाता। अगर मान लो कुछ अंदर घुस भी गया है, इससे कुछ एक आइडिया लगता है कि फील्ड में ये पॉपुलेशन है, तो किसानों को चाहिए जब बॉल बन गई है तो खेत में अलग अलग जगह से 20 टिंडे तोड़े, तोड़ के फिर उनको खोल के चेक करें, वैसे तो पता ही चलेगा ना, और 20 में दो टंडे में अगर सूड़ी निकल रही है उस दशा में एमामेक्टिन बेंजोइट 5 SG, इसका जो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगभग इसका स्प्रे कर सकते हैं, 80 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे इसका किया जा सकता है, इससे अच्छे से कंट्रोल हो
1: जी
0: जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कीटों का जो जाल है बड़ा ही विकट है जैसे कि आपने अभी बताया, और इस दिशा में हमारे कृषि वैज्ञानिक इनको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि फसल की बुआई से पहले किसान किन निवारक उपायों को अपनाकर कीटों के प्रकोप को कम कर सकता है।
0: ये एक प्रकार से बचाव कहते नहीं, बचाव ही ज्यादा बेहतर है,
1: जी
0: प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, हमने जो देखा है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, किसान भाई क्या करते हैं, जब फसल कटती है, कटने के बाद कपास अपना इकट्ठा किए रखे, कुछ उसमें टिंडे भी लगे रहते हैं, वो जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो रखे ही रहते हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनता है अगले सीजन में प्रकोप बनने का। तो जो आप इकट्ठा करके कबाड़ रख रहे हैं पिछले सीजन का, उसको किसी तरह से खत्म करिए अगले सीजन से पहले, क्योंकि इसकी सुंडी नवंबर दिसंबर के महीने में सुषुप्तावस्था में चली जाती है, उसके अंदर ही रहेगी जो अवशेष है फसल के, तो उनको नष्ट करना पहले जरूरी है फसल, वो भी पूरे क्षेत्र के सभी किसान मिलकर इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से पिंक बॉलवर्म पर ऐसे ही नियंत्रण मिल सकता है, जब पॉपुलेशन अगले सीजन के लिए बचेगी नहीं, क्योंकि रहती उसी में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कपास के बाद फिर लगाएंगे गेहूं, तो खेत में तो रह नहीं सकती, तो अवशेष में ही रहती, तो अवशेष को नष्ट करना या जलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मान लो कोई नष्ट नहीं कर सकता उसे ईंधन के लिए प्रयोग करना, तो उस पर एटलीस्ट जाली लगा दें कोई, जैसे मच्छरदानी टाइप की, तो उसमें से अगर पतंगा निकलेगा तो उसी के अंदर फंस जाएगा, बाहर खेत में नहीं जा पाएगा, इसका अगर काम कर लेंगे तो काफी हद तक नियंत्रण मिल जाएगा
1: जी।
0: इस कीट का। उसके अलावा अगर सफेद मक्खी है वो भी खरपतवारों पर पनपती है, कपास नहीं होती, तो अगल बगल जो खरपतवार है उनको नष्ट करें सीजन से पहले, खेत के आसपास जो खरपतवार हैं उनको नष्ट कर, कपास के खेत बगल में अगर कोई कोई बगीचा है तो वहां खरपतवार होंगे, उन पे पनपती है, तो वहां पे उनको नष्ट कर देंगे तो सफेद मक्खी और पिंक बॉलबम से नियंत्रण मिल सकता है। और हरा तेला के लिए भी लगभग यही चीजें लागू होती हैं, उसका भी पूरे IPM तकनीक अपनानी पड़ती है।
1: तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर आता है, ये तो हमारे शत्रु कीट थे, अगर हम बात करें कपास में मित्र कीटों की, यानी प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्या वो बचा सकते हैं?
0: बिल्कुल बचा सकते, किसानों के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किए,
1: जी
0: सफलता भी मिली। कपास में बहुत से मित्र कीट होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि क्राइसोपरला कार्निया, इसमें होते हैं एक लेडी बर्ड बीटल, इसमें एक होता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा हम लैब में बना के भी खेत में छोड़ते हैं, ट्राइकोग्राम क्यूलोनिस या ट्राइकोग्रामा बैक्टरी, और 1.5 लाख इसके एक कार्ड पे लगभग 20,000 लग जाते हैं, उनको अगर हम खेत में स्टेपल करते हैं सभी बॉलवर्म के लिए वो काम करता है। और अगर हम कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग ना करें सिर्फ, उससे हमारे मित्र कीट बहुत से बच जाते हैं, जैसे सफेद मक्खी का एक पैरासिटॉइड होता है परजीवी, एरोटमोसीरस स्पीसीज है, एनकार्सिया स्पीसीज है, तो ये उसके बच्चों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, तो उसके अंदर सारे सफेद मक्खी के बच्चे खत्म हो जाते हैं और मित्र कीट ही निकलते हैं। तो ऑटोमेटिक 70% तक प्रेसिपिटेशन।

0: फील्ड में कर देते हैं, बसरते आप बेकार में पेस्टिसाइड न डालें शुरुआत में जल्दबाजी में। एक किसान भाई क्या उसको जानकारी नहीं होती, तो कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर, उनको भी कई बार जानकारी नहीं होती, उन्हें इतनी जानकारी होती है इसके लिए ये दवा डालनी बस, उन्हें ये नहीं पता इसका ये मित्र कीट भी है। तो वो अंधाधुंध दवाई से बचें, जरूरत पड़ने पे ही कीटनाशक डालें, और खेतों के आसपास ऐसी फसल जैसे कपास के आसपास मक्का लगा दें, बाजरा लगा दें या काउपी, तो उससे भी काफी हमारे मित्र कीटों का संरक्षण होता है और कपास की फसल को मित्र कीटों द्वारा भी बचाया जा सकता है।
1: जी बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, इस बात का हमारा किसान भाई बहन भी ध्यान रखें। और अंत में आपसे ये पूछूंगी कि कपास उत्पादक किसानों को समर्पित कीट प्रबंधन के संबंध में आप क्या सुझाव देने चाहेंगे चलते चलते?
0: चलते चलते एक ही सुझाव है कि आप खेत की निगरानी करें, केवल मेड़ के किनारे से न देखें, बीच में घुस के भी देखें, और जरूरत पड़ती है हर एक कीट को पहचाने। पहचानने के लिए हमारे संस्थान ने एक एप्लीकेशन बनाया है NPSS, उसको डाउनलोड करें, भारत सरकार द्वारा उसको रिलीज किया गया है, उससे आप पहचान भी कर सकते हो और सही कीट के लिए सही दवा का चयन कर सकते हैं। आप कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप भटकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, इसको अपनाएंगे आप कपास का अच्छा उत्पादन पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, किसान भाइयों याद रखिए, कीट प्रबंधन का मतलब केवल कीटनाशक का प्रयोग नहीं बल्कि सही समय पर सही पहचान, सही उपाय और संतुलित प्रबंधन है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन इससे पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
2: तो अभी हमने सुना कपास फसल में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में, और हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनूप कुमार जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM दिल्ली में। तो प्रतिमा, इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब मनोरंजन भी होना चाहिए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: और किसान भाई बहनों, ये था बहुत ही प्यारा सा लोकगीत। और रजनीश, इस तरीके के लोकगीतों को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारी भारतीयता की एक अलग ही छाप नजर आती है हर गीत के अनुसार। तो रजनीश, हमारी जो कृषि की तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें मौसम का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसान भाइयों को सही जानकारी हो मौसम की, तो वो उसके अनुसार अपना खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो आइए अपने किसान भाइयों को भारत मौसम विज्ञान के अनुसार जानकारी दे देते हैं। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना नहीं है। दिन के दौरान तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।
1: तो ये थी मौसम की जानकारी। तो प्रतिमा, हमारे कृषि वैज्ञानिक समय समय पर किसान भाई बहनों के लिए कृषि संबंधित नित नई जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो आइए इस वक्त उनके लिए क्या मौसम आधारित कृषि सलाह है वो भी बता देते हैं।
0: बिल्कुल रजनीश, मौसम आधारित कृषि सलाह है किसान भाइयों के लिए कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी भी प्रकार

0: छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि व सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। और साथ ही रजनीश, किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी, मिर्च तथा बैंगन की फसल में माइट, जैसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें।
1: साथ ही किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस समय आगेती मटर की बुवाई के लिए बीज की व्यवस्था करें और इसमें उन्नत किस्में हैं पूसा प्रगति, पंथ मटर 3 और खेतों को भी तैयार करें। साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके।
0: तो ये थी जानकारी और कृषि सलाह हमारे किसान भाई बहनों के लिए। और रजनीश, किसान भाई बहनों को इंतजार रहता है आजादपुर मंडी भाव का, ताकि अपने फल और सब्जियों को सही मूल्य पर, सही दरों पर खरीद सकें और बेच सकें। तो आइए जानते हैं आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव। अगर हम आलू की बात करें तो ये 15 से 18 रुपए प्रति किलो, प्याज का मूल्य रहा लगभग 35 से 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर का मूल्य 25 से 35 रुपए प्रति किलो और बीन्स का जो मूल्य है वो है 25 से 35 रुपए प्रति किलो और खीरे का मूल्य रहा लगभग 20 से 25 रुपए प्रति किलो।
1: और फलों के भाव इस तरह से रहे, सेब का भाव है 100 से 120 रुपए किलो, केला बिक रहा है 20 से 25 रुपए किलो, अमरूद बिक रहा है 40 से 45 रुपए किलो और पपीते का भाव है 25 से 30 रुपए प्रति किलो।
0: तो ये थी जानकारी और किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी रजनीश। और देखिए ना, किसान भाई बहनों को हमारे कार्यक्रम का इंतजार तो रहता है, लेकिन हमें इंतजार रहता है उनकी प्रतिक्रियाओं का। तो किसान भाई बहनों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप अपनी फीडबैक हमें जरूर बताएं।
1: फीडबैक भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
0: तो किसान भाई बहनों, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और उत्पादन के साथ साथ आय का अर्जन कई गुना करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। इसी क्रम में सुनते हैं गजल कवाली के कार्यक्रम के अंतर्गत एक खूबसूरत सी गजल, आवाज है जगजीत।

0: श्रोताओं, गजल और कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी है खूबसूरत सी गजल जगजीत साहब की आवाज में। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर।

0: मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार सत्य निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी। लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2,300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि अग्निशमन सेवा के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से इन इमारतों के अंदर मौजूद छात्रों का सामान सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही सभी छात्रों और स्थानीय निवासियों से अधिकारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तेज कर दी है। महापौर प्रवेश वाही और निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों की पहचान करने, जोखिम के स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करने और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जहां आवश्यक हो सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण सहित तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि उपायुक्तों को पेइंग गेस्ट आवासों, स्कूलों, होटलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनिवार्य स्वीकृतियां, अनुमतियां तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध और वैध हों। आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इमारत का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था, जबकि उसका प्रबंधन बेटा महेश देख रहा था। संपत्ति उर्मिला के नाम दर्ज थी। तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार पेइंग गेस्ट आवास विनियमन और सुरक्षा विधेयक लेकर आएगी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पेइंग गेस्ट संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय जीओवी पीजी पोर्टल की व्यवस्था करना है। श्री सूद ने ये बात आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। एक रिपोर्ट।
3: सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद छात्रों की जीवन स्थितियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सीधे समझने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव, विभिन्न समस्याओं और पीजी व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परिचालन तथा बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं के बारे में श्री सूद को जानकारी दी। छात्रों ने एक समर्पित वेब

0: होटल बनाने की मांग की, जिस पर पीजी संचालकों के लिए किराया, भोजन व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं तथा भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध कराना अनिवार्य हो। वहीं संवाददाताओं से बातचीत के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय बैठक में छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
1: अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अंतर्गत एक कमेटी जो पीजी चलने के कानूनों के बारे में बात करें, नए हॉस्टल्स के बारे में बात करें के संदर्भ में कमेटी का गठन किया है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज स्टेक होल्डर्स के साथ हमने बात की है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के तौर पर हमने ये निर्णय किया है कि कैसे उनको सुरक्षित पीजी मिल सकते हैं, क्या क्या कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से नए हॉस्टल के लिए ज्यादा FPR लाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता।
0: इसके अलावा शिशुद ने यह भी बताया कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में दक्षिणी परिसर, मुखर्जी नगर सहित राजधानी के प्रमुख छात्र क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर कड़े संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने तथा हॉस्टल के लिए फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: बायलेटरल द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही है उसकी बारे बात है। ये मुद्दा भी, बहुत सारे मुद्दे जब द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।
2: नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल की जनता और सरकार के साथ एकजुटता और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत, बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज राजधानी में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7:45 से रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए विभाग ने यातायात के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।
4: ब्रिक्स समिट दिल्ली में 11, 12, 13 सितंबर को है भारत मंडपम में। इसमें बाहर से हेड ऑफ द नेशंस और फॉरेन डेलीगेट्स और कुछ और नेशंस के हेड्स, काफी VIP मूवमेंट होगा। तो इसके तहत हम लोगों ने डिटेल ट्रैफिक अरेंजमेंट बनाया है। हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग डायवर्शन देंगे। भारत मंडपम के पास जो भी आसपास के, जैसे मथुरा रोड है, भैरव मार्ग है, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे।
2: UGC नेट की पुनर्परीक्षा बुधवार और गुरुवार को होगी। इस परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा में शामिल होने जा रहे दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए एक सलाह जारी की गई है। निर्देश में राजधानी में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना बताई गई है। विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से संवाद भी किया। विद्यार्थियों ने विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर का निर्देशित भ्रमण किया तथा इसके समृद्ध स्थापत्य और संस्थागत विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इनमें प्रस्तावित दिल्ली औद्योगिक नीति 2026-2036, दिल्ली स्टार्टअप नीति 2026-2031, दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम, निर्यात संवर्धन, नवाचार पहलों के समयबद्ध क्रियान्वयन और MSME सहायता जैसे विषय शामिल रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान दिल्ली के औद्योगिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। साथ ही MSME और कारीगरों को सहयोग प्रदान करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा सरकारी सेवाओं की तेज और अधिक प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने

0: से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों पर भी समीक्षा की गई। उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज घड़ौली वार्ड 194 क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उप महापौर ने अतिक्रमण, अवैध डेयरियों तथा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में संबंधित विभागों को तत्काल और नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए। क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थानों के प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए उप महापौर ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने तथा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: सरकार ने त्योहारों के मौसम से पहले राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खाद्य विभाग ने 2300 किलोग्राम से अधिक खोया, धाप और मक्खन जब्त किया है। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मजनू का टीला स्थित MCD डंपिंग साइट पर नष्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री दुर्गंधयुक्त और खराब अवस्था में थी और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में लावारिस पाई गई। श्री सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वो गहन निरीक्षण जारी रखें और पूरे त्योहारों के मौसम में कड़ी निगरानी रखें। कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा ने आज राजधानी को पर्यटक स्थल बनाने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों की सुरक्षा और सुगमता पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार मराठी, संथाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और गढ़वाली सहित अन्य भाषाओं और विधाओं में उत्कृष्ट फिल्मों को भी मान्यता देते हैं। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार किसी संथाली फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के गैर फीचर फिल्म वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में फिल्म पुरस्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। 1954 में शुरू हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार सत्य निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी। लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो 10 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी हमें वक्त बता रही है ठीक 8 बजकर, ये लीजिए, पूरे हुए 20 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत पिरो कर लाए हैं हम आप सभी के लिए चंद खूबसूरत से फिल्मी नगमे, जिसकी शुरुआत करते हैं खूबसूरत सी आवाज के साथ, और ये आवाज है सोनू निगम की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीत मालिका कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत से फिल्मी गीतों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, अंग्रेजी और फिर उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत

0: करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026.

0: under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ले गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
6: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म

0: को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
2: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फिनटेक सफ़र को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी टेक्नोलॉजीज़ फाइनेंस के शोबे में नए इम्कान खोल रही हैं। जनाब मोदी ने आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें एडिशन से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने फिनटेक के चैम्पियन के तौर पर UPI की सताइश की और इस बात का जिक्र किया कि पिछले महीने 2,400 करोड़ से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गईं। उन्होंने कहा कि अब भारतीय UPI 11 मुल्कों में दस्तियाब है।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: पिछली सहमाही में मुल्क के काबिल जिक्र मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि चैलेंजों से पुर आलमी तनाज़ात, गैर यकीनी सूरतहाल और तवानाई और ज़रूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव के बावजूद भारत की 7.8% तरक्की ने दुनिया को एक बार फिर उम्मीद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुल्क की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- तक पहुंचा दिया है, जिसमें एक मुस्तहकम आउटलुक शामिल है, और इस तरह भारत 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे के बाद ए रेटिंग के जुमरे में वापस लौटा है। 4 रोज़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक मुनाक़िद हो रहा है। इससे कबल दिन में आज वज़ीर आज़म ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों के 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। जनाब मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अंबरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर दराज के कबायली इलाके अलीराजपुर को कौमी रेल ग्रिड से जोड़ती है। वज़ीराज़म ने 9,700 करोड़ रुपये की मालियत के रेलवे के 3 तौसी प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वज़ीराज़म ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है।
1: अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मुकम्मल खुद कफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदर तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समंदरों में भारी जहाजरानी तक का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वो अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती कायापलट को भी उजागर किया।
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: वज़ीर आज़म ने नवसारी में नौ तामीर शुदा BJP दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक पुरहजूम अवामी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई को रोज़मर्रा की बिला कोशिश आदत बना लें, साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई आखिरी फर्द तक हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादिद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ रबते में है और इस बात पर गौर कर रहा है कि इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नज़रियात और तजावीज़ हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर SJ ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉक्टर

0: सर ने कहा था कि भारत ने मुसलसल ये मौकफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में दो लेबॉरेटरियों में काम कर रही है और वो 1200 डीएनए नमूनों की जांच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की जानिब लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचा लिया गया है।
1: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी, और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के आवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहत इमदाद, बचाओ और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने और अवाम से अवाम के दरमियान रबते इंतहाई अहम हैं। इस महीने की 6 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हिस्से के वाचा में और कल चीन की जानिब दमाई में पहली आला सीनियर मिलिट्री कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग के सिलसिले में सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि मगरबी सेक्टर में भी इसी तरह का तरीक़ेकार मौजूद है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई और बहरी ताउन को वसत देना है। बिंद्रा नाई के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जयासिकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने जनाब सिंह का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर दिफा मजबूत दिफाई और बहरी साझेदारी समेत बाहमी तौर पर फायदेमंद मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से श्रीलंका की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। जनाब सिंह अपने दौरे में कोलंबो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। रवानगी से कबल अपने बयान में जनाब सिंह ने भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी और महासागर विजन के तहत श्रीलंका को भारत के अहम साझेदारों में से एक करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस ने आज ये कहते हुए कि यूक्रेन जंग खत्म होने के लिए भारत की जानिब से अमन कोशिशों का वो खैर मकदम करता है, कहा कि मॉस्को की हिकमत अमली बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने के नई दिल्ली के मौक़िफ़ से करीबी तौर पर हम आहंग है। ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस से पहले आज दोपहर नई दिल्ली में एक वर्चुअल ब्रीफिंग से मीडिया से खिताब करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने ये बात कही। जनाब पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन लड़ाई पर वो भारत के मौक़िफ़ से वाकिफ हैं और काफ़ी हद तक वो उनके खुद के मौक़िफ़ से मुताबिकत रखता है कि वो यूक्रेन जंग का पुरअमन हल चाहता है और रूस इससे इत्तेफाक रखता है। जनाब पेस्कोव ने कहा कि ये यूक्रेन के साथ जंग की सूरत हाल से सदर पुतिन की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी को आगाह किए जाने का भी एक मौका होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के एकता नगर में 22 सितंबर को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक बड़ी पॉलिसी पहल के तहत इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कौमी फिल्म अवार्ड्स की तकरीब को कौमी राजधानी से परे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस साल एकता नगर में होने वाली तकरीब पूरे भारत से सिनेमा की दुनिया के होनहार अफराद को यकजा करेगी, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फरोग मिलेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल के कौमी फिल्म अवार्ड्स मुख्तलिफ जबानों, असनाफ और सिनेमा की गुनागुनियत का जश्न है। फिल्म आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म, जबकि फिल्म भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है। इस दौरान ज्यूरी ने रामनामी को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री करार दिया है। सरकर्दा रोल में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड फिल्म ब्रह्मयुगम के

0: लिए ममूथी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को दिया जाएगा। अदाकारा यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में उनके रोल के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। वहीं फिल्म स्वतंत्रते वीर सावरकर के लिए रणदीप हुडा को बेहतरीन डेब्यू हिदायतकार का अवार्ड दिया जाएगा। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: साल 1954 में शुरू हुए कौमी फिल्म अवार्ड्स सिनेमा की दुनिया के मुल्क के सबसे पुरवकार इनामात होते हैं। ज़िरात और किसानों के बहबूद की वजारत ने इत्तला दी है कि इस महीने की 4 तारीख तक ज़ेरे काश्त खरीफ की फसल का रकबा 1,086 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वजारत ने बताया कि 421 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर चावल की काश्त की गई है, जबकि 117 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर दालों की तुखमरेजी की गई है। वजारत के मुताबिक श्री अन्न और मोटे अनाज की बुवाई का रकबा 181 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। इसके अलावा तिलहन का ज़ेरे काश्त रकबा 191 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वजारत ने मजीद बताया कि 109 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा कपास के ज़ेरे काश्त है। वजारत के मुताबिक 58 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर गन्ना उगाया गया है। हुकूमत ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में ITI क्लस्टरों के लिए 735 करोड़ रुपये से ज़्यादा औसत मालियत के एक प्रोजेक्ट के साथ स्ट्रेटजिक सरमायाकारी मंसूबों को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपये की सरमायाकारी, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपये और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपये की सरमायाकारी के मंसूबे शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 दिन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारत ने अहमदाबाद में जारी आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के तहत आज सोने के 2, चांदी के 2 और कांस्य के 1 तमगे समेत कुल 5 तमगे जीते हैं। मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबलों में भारत के तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने सोने के तमगे जीते, जबकि हरविंदर सिंह और विजय सुंदी ने मर्दों के रिकर्व टीम जुमरे में भी सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं खवातीन के रिकर्व टीम मुकाबले में भावना और पूजा ने चांदी के तमगे जीते। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपये की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं ताकि बाहमी दिफा और समंदरी सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। और रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री का श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफगानी की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध

0: समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest GFF 2026 in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said, Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "World has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: द 4-डे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 8th to 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, that is PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness and enhance public engagement. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee, that is NSC, meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh, who arrived in Colombo on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership, made the remarks during an interaction with the Indian diaspora yesterday.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 गीत सुनहरे कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे और उन यादों में ले जाते हैं जो आपके दिल में आज भी बरकरार हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गाने ही जो लिखे हैं, जो गाए गए हैं और जो संगीत उनमें है, वो इतना खूबसूरत है कि को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो चलिए निकल पड़ते हैं इन गीतों के सफर पर आशा भोसले की आवाज के साथ। जी हाँ, पहला गीत फिल्म वक्त से आ रहा है आपके लिए।

जी हाँ, जो भी है बस यही एक पल है, और वो पल आप हमारे साथ और हम आपके साथ जी रहे हैं रेडियो के माध्यम से। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनवाने जा रहे हैं, कश्मीर की कली फिल्म से। और ये रात में अगर आप कुछ ऐसे बोल सोच रहे हैं कि आपको उनकी तारीफ़ करनी है, तो इस गीत से बेहतर शायद ही कुछ हो जिससे आप उनकी तारीफ कर पाए। तो चलिए करते हैं मिलकर तारीफ।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ों में ये गीत फिल्म राजकुमार से, जिसमें संगीत शंकर जय

का था। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर व अन्य साथियों की आवाज़ों में। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, और गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत फिल्म शागिर्द से। बोल मजरूह के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे जो आपको दिल तक पहुंच रहे हैं। और अगला गीत फिल्म किस्मत से आशा भोसले की आवाज़ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नूर देवसी के लिखे बोल हैं और ओपी नैयर ने संगीत से पिरोया था।

इस गीत के बाद अब चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। जी हाँ, किशोर कुमार, आशा भोसले व अन्य साथियों की आवाज़ों में आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है कर्ज, बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत सुनहरे कार्यक्रम में ये आ रहा है अगला गीत।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 2 बजने को हैं, लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात की। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री की श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने

0: including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad yesterday, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event with a dominant win over Iraq's Abbas Kadhim and Anwar Aldawood 152-139. Men's duo of double Paralympic medalist Harvinder Singh and Vijay Sundi overcame Slovakia's David Ivan and Denis Ivan 6-2 to bag the yellow medal in recurve team title. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver after going down 0-6 to Chinese Fair in the final. Swati and Adil Mohammed Nazir Ansari finished runners-up in the mixed team W1 recurve compound event, taking silver. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। गीत बहार कार्यक्रम का अब समय है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक। और हमेशा की तरह फेहरिस्त बिल्कुल तैयार है। हम अब निकलेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक के सफ़र पर, जो कि चलेगा ठीक 3 बजे तक। तो चलिए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इन गीतों का।

0: इसी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी योग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकल में भी

बारिश की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad yesterday, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event with a dominant win over Iraq's Abbas Kadhim and Anwar Aldawood 152-139. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल और गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको गजल सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में।

गुलाम अली की आवाज़ में कार्यक्रम की ये पहली गज़ल आप सुन रहे थे। अब आइए आपको सुनवाते हैं एक और गज़ल मेहंदी हसन की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल और गीत। इस कार्यक्रम में अभी आपने जो गजल सुनी उसको आवाज दी थी जगजीत सिंह ने। अब आइए सुनते हैं मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी गजल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गजल और गीत अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 52 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार होंगे 5:05 पर। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी होगा प्रातः 5:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे प्रातः 6:10 पर।

प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। संगीतिका ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 पर।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 से। प्रातः 8:45 पर होगा हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा।

प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साइंस मैगजीन। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से।

0: रात 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 5 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं।
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक

0: आई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
0: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई है और भारत राहत और बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी नेपाल का सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी और कराईकाल में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has called for expanding the global reach of India's Unified Payments Interface, that is UPI. He urged the fintech sector to connect the country's homegrown retail payment network, UPI, with payment systems in more countries and help the Indian diaspora reduce remittance costs. Mr. Modi stated this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai yesterday. The Prime Minister hailed UPI

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध ऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध ऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्ध ऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़।